मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी इंदौर है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून 2026 है। 5:57 होने को है, हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी इंदौर है। 6 बजा चाहते हैं समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

0: बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

उगते सूर्य की सुनहरी किरणों के साथ हम अपने राष्ट्र को नमन करते हैं। ये भूमि वीरों के त्याग और बलिदान से पावन बनी है। आइए देश प्रेम और राष्ट्र सेवा की भावना को अपने हृदय में जागृत करें।

भगवान श्री कृष्ण प्रेम, करुणा और धर्म के प्रतीक हैं। उनकी मधुर बांसुरी की धुन आज भी भक्तों के हृदय को आनंद से भर देती है। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है।

संत कबीर दास जी ने अपने दोहों और वाणी के माध्यम से मानवता का संदेश दिया। उन्होंने प्रेम, सत्य और सदाचार को जीवन का आधार बताया। उनकी वाणी आज भी समाज को नई दिशा प्रदान करती है। आइए संत कबीर के अमर संदेशों का श्रवण करें।

माध्यम से ईश्वर की अनुभूति का संदेश दिया है। यह भक्ति मन को भीतर की यात्रा पर ले जाती है। आत्मचिंतन और साधना से जीवन में शांति और संतुलन आता है। निर्गुण वाणी मानव को सत्य के निकट ले जाने का माध्यम है।

ये आकाशवाणी इंदौर है। प्रस्तुत है चिंतन। मनुष्य के जीवन में यदि किसी एक तत्व को सबसे निर्णायक शक्ति कहा जाए तो वो है प्रयास। प्रयास ही वो सेतु है जो स्वप्न और वास्तविकता के बीच दूरी को पाटता है। बिना प्रयास के न तो लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, नहीं व्यक्तित्व का विकास। संसार का कोई भी महान कार्य, कोई भी उपलब्धि, कोई भी परिवर्तन, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक, प्रयास के बिना साकार नहीं हुआ। प्रयास केवल श्रम नहीं है, बल्कि वह दृढ़ संकल्प, निरंतरता, साहस और आत्मविश्वास का समन्वित रूप है। प्रयास शब्द का सामान्य अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सचेत और निरंतर श्रम। परंतु इसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। प्रयास केवल शारीरिक परिश्रम नहीं, बल्कि मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक संलग्नता का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति, समय और क्षमता समर्पित कर देता है, तब वो सच्चे अर्थों में प्रयास करता है। प्रयास के तीन मुख्य स्वरूप माने जा सकते हैं। शारीरिक प्रयास, शरीर की शक्ति और श्रम द्वारा किया गया कार्य। मानसिक प्रयास, सोच, चिंतन, योजना और रणनीति बनाने का कार्य। तीसरा, आत्मिक प्रयास, आत्मबल, धैर्य और विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ना। इन तीनों का संतुलित समन्वय ही सफलता की कुंजी है। जीवन एक निरंतर संघर्ष है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य अनेक चुनौतियों का सामना करता है। यदि वो इन चुनौतियों से घबराकर बैठ जाए तो जीवन ठहर जाता है। प्रयास ही जीवन को गतिशील बनाए रखता है। प्रकृति भी हमें प्रयास का पाठ पढ़ाती है। बीज जब धरती के गर्भ में होता है तो वह अंधकार और दबाव को सहते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। निरंतर प्रयास के फलस्वरूप ही वह अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बनता है। यदि बीज प्रयास न करें तो वह सड़कर समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य भी यदि परिस्थितियों के आगे हार मान ले तो उसका विकास रुक जाता है। प्रयास ही उसे विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है। जहां तक सफलता और प्रयास का संबंध होने की बात है तो सफलता और प्रयास का संबंध अत्यंत गहरा है। सफलता संयोग से नहीं मिलती, बल्कि वह निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने अथक प्रयास किया वही महान बने। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। जब उनसे पूछा गया कि वे इतनी असफलताओं से निराश क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल हजार ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते हैं। यह कथन बताता है कि सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसी प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी प्रयास का प्रेरणादायक उदाहरण है। साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने निरंतर परिश्रम और समर्पण के बल पर भारत के राष्ट्रपति पद तक की यात्रा की। उनका जीवन ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि प्रयास सच्चा हो तो ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास का विशेष महत्व है। कोई भी विद्यार्थी केवल बुद्धिमत्ता के बल पर सफल नहीं हो सकता है। नियमित अध्ययन, अनुशासन और अभ्यास ही उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि मध्यम बुद्धि वाला विद्यार्थी यदि नियमित और ईमानदारी से प्रयास करें तो वो अधिक बुद्धिमान किंतु आलसी विद्यार्थी से आगे निकल जाता है। परीक्षा में सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन और उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता, इन सभी के पीछे निरंतर प्रयास ही मुख्य कारण होता है। प्रयास आत्मविश्वास को जन्म देता है। जब व्यक्ति किसी कार्य में निरंतर मेहनत करता है तो उसे अपने कौशल और क्षमता पर विश्वास होने लगता है। यही विश्वास उसे
और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। असफलता भी प्रयास का एक हिस्सा है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेकर पुनः प्रयास करता है वही अंततः विजयी होता है। अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इसमें आज

0: अब सुनेंगे सोयाबीन की अधिक पैदावार किस प्रकार करें। इस आलेख का वाचन कर रही हैं तुलसा दरगैया।
1: किसान भाई नोनी राम राम। किसान भाई नोनी, देखो अब खरीफ की तैयारी तो आपने कर ही ली होएगा, तो खरीफ की तैयारी में सोयाबीन की फसल तो हमारा किसान भाई लगावल न, सोयाबीन की फसल की अच्छी पैदावार हम किस प्रकार से करी सका एका बारा में बात करांगा। भाई बहन नोनी, सोयाबीन की अच्छी पैदावार, अच्छी हरियाली न, ज़्यादा फल्ली न का लेना पौधा न ख, सही समय पर संतुलित पोषक तत्व न की जरूरत पड़े। एकालेण बुवाई का समय DAP न सल्फर को प्रयोग करा। शुरुआती बढ़वार न फूल आवना का समय NPK यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम या टॉनिक जेखा नाइट्रोबेंजीन या सागरिका का ओको स्प्रे करा। एक अलावा भाई बहनोनी, हमको कुछ बात न को आरू ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बुवाई का समय अच्छी जड़ न शुरुआती विकास का लेना प्रति एकड़ 50 किलो DAP डाला। न कदी DAP को प्रयोग हम नहीं करी रहा है तो SSP प्रति एकड़ 100 से 150 किलो को इस्तेमाल एक अच्छो विकल्प छे, क्योंकि एकाम फास्फोरस का साथ साथ कैल्शियम न सल्फर भी रहज। नाइट्रोजन फास्फोरस न पोटेशियम पौधा न की शुरुआती वानस्पतिक वृद्धि, पत्ती न का विकास न मजबूत तना न का लेना, एक पानी में घोड़ी न उर्वरक को 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ का हिसाब से छिड़काव करा। नाइट्रोबेंजीन जेका हम बूम फ्लावर का नाम से भी जाना, ई वानस्पतिक वृद्धि न फुटाव का बढ़ना में बहुत प्रभावी रह। एक ही मात्रा 250 से 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ का हिसाब से करा। फूल न फल्ली अवस्था यानी कि 35 से 50 दिन की अवस्था में फसल का सबसे ज्यादा पोषक तत्व न की जरूरत पड़े, जेका सी फूल झड़ नहीं न फल्ली न को आकार भी बड़ो रहे। फूल आवना की अवस्था में खाद जड़ न तना का मजबूत करज न ज्यादा फूल लावना में मदद करज। एकालेण हम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की मात्रा 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ का हिसाब से एका में डाला। जिंक न बोरान भी फली न का निर्माण न दाना न का भराव का लेना, बोरान 20% 100 से 150 ग्राम न चिलिटेड जिंक 100 ग्राम प्रति एकड़ का हिसाब से छिड़काव करा। भाई बहनोनी, असो सल्फर भी जरूरी छे, ई फल्ली न का विकास न तेल की मात्रा का बढ़ावना में सहायक रहे, या फिर हम एक पानी में घोड़े न सल्फर को छिड़काव भी करी सकान। असो जैविक न टानिक विकल्प भी जरूरी छे, जेका लेना हम समुद्री सेवाल जेखा सागरिका या बायोविटा प्रति एकड़ 250 से 300 मिलीलीटर जो प्राकृतिक रूप से पौधा न की वृद्धि, जड़ न का विकास न हरियाली का बढ़ावल। एक अलावा ह्यूमिक एसिड शुरुआती अवस्था में मट्टी की उर्वरता, पोषक तत्व न को अवशोषण का अच्छो बनौना का लेना, एक सिंचाई का पानी के साथ हम दी सकान। सोयाबीन की अच्छी पैदावार न फूल फली का प्रबंधन का बारे में हम जानकारी होनी चाहिए। सोयाबीन की फसल में जल भराव की समस्या होने पर तुरंत खेत से अतिरिक्त पानी बाहर निकाले देवा। पौधा न की जड़ में हवा को संचार बने न रखना का लेना 1 से 2% यूरिया या DAP को घोल को पानी छिड़काव करा। एक अलावा फपून जनित रोग न से बचाव का लेना कार्बेंडाजिम या मेंकोजोब को छिड़काव करा। अतिरिक्त पानी निकासी का लेना हम खेत की मेड़ को काटीनर जो रुकेल पानी से होकर निकाली देवा न, क्योंकि जल भराव से जड़ गलना लगन न खेत में पानी रुकना नहीं देवा। लगातार बारिश न जल भराव का कारण मट्टी से नाइट्रोजन घुड़ई न नीचे चली जाए, एकासी निपटना का लेना 10 ग्राम यूरिया न 20 ग्राम DAP प्रति लीटर पानी में मिले न पौधा न पर स्प्रे करा। जल भराव से जड़ सड़न या कॉलर रॉट को खतरो बढ़ी जाए, बचाव का लेना कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर या मेंकोजेब को छिड़काव करा। साथ जब खेत में थोड़ी नमी कम हो जाए, मिट्टी सूखने लगा तो हल्की निराई गुड़ाई जरूर करा, जिका से मट्टी में हवा को संचार अच्छे से शुरू हो जाए। तो भाई बहनोनी, इस बात को हम ध्यान रखांगा तो हमारी जो सोयाबीन की फसल है वो अच्छी आवेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, ये आकाशवाणी इंदौर है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

महिला कार्यक्रम प्रसारित होगा दिन में 1 बजे से। इसमें आज आप सुनेंगे योजना स्टेप पहल, कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं के लिए रोजगार। इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पूजा चौरसिया की वार्ता। विषय होगा भारतीय लोक परंपराओं को सहेजने में महिलाओं की भूमिका। इसी कार्यक्रम में फैमिली फिटनेस के अंतर्गत सुनिएगा, हर दर्द का इलाज दर्द निवारक गोली नहीं। महिला कार्यक्रम में ही आप सुन सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। क्रम होगा आपकी सुरक्षा आपके हाथ।

श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भवन हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:05 से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 सुनिएगा उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग।

शुभा मुद्गल की गई रचनाएं सुनिएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:15 बजे से। वतन का राग ये प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 बजे से। इसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। प्रीतम मालवीय और साथियों की गई लोक रचनाएं सुनिएगा लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:00 बजे से।

0: अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 6:55 होने को है। समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मंचस्य 250वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्ग विद्युत औद्योगिकी वीथि तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर्प्रमुखान् आधारभूत संरचना प्रकल्पान् समीक्षितवान्। एतेषां प्रकल्पानां आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। आर्थिक विकासं क्षेत्रीय संपर्कं औद्योगिक विकासं तथा जनकल्याणं वर्धयितुं संधारिताः

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से ई-0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का

0: आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी।
4: ये आकाशवाणी इंदौर है, 7:10 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे।
5: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में मंत्रालयों और राज्य सरकारों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने साइबर खतरों को लेकर जागरूकता पर दिया जोर। आज संविधान हत्या दिवस पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। इस बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई और प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि साइबर खतरा एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो बिना दस्तक दिए हमारे घरों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल भोपाल में आयोजित राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान के तहत सेफ क्लिक 2.0 अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को साइबर सुरक्षा के तीन महत्वपूर्ण सूत्र जागरूकता, सावधानी और सहभागिता के बारे में बताया।
2: साइबर सुरक्षा जागरूकता में अगर अपन जाते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सबको पता होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी, यह नंबर आपकी अपनी ढाल बनता है, सबसे पहले इस पे कॉल करें। फिर सावधानी की बात आए तो जब भी कोई मोबाइल पे अनजान लिंक आए या अनजान कॉल आए, डरा धमका आए, तो रुको, सोचो, फिर कोई कदम उठाओ। फौरन जल्दी मत करो, लालच में मत आओ, विचार करके आगे बढ़ो।
1: ये अभियान 24 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक प्रदेश के 10 संभाग, 55 जिलों और 50,000 से अधिक गांवों में एक साथ चलाया जाएगा। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित की जाएगी। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल होंगे। वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भूमि आवंटन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई स्टार्टअप तथा स्वरोजगार अभ्यर्थियों को चेक प्रदान करेंगे तथा एमएसएमई प्रदर्शनी और ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन भी करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। कल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर झाबुआ और डिंडौरी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट ने एनकोड की बैठक में निर्देश दिए कि अब जिले के स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में येलो लाइन खींचकर तंबाकू बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दूसरी ओर डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि जिले भर में रैलियां निकालकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं 15 से 31 जुलाई तक विशेष जागरूकता पखवाड़े के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के हितग्राहियों को दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल कल लोकभवन में आयोजित पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। भुवनेश्वर में 24 से 28 जून तक आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पोल वॉल्ट स्पर्धा में देव मीणा ने 5.46 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देव मीणा ने आगामी एशियाई खेल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में आज शाम तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की दस्तक बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते होने के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों में अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। इंदौर जिले में 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। बारिश शुरू होते ही जिले में खरीफ की बुआई का कार्य भी शुरू हो गया है। जिले में वर्ष 2026 के खरीफ सीजन में 2,52,624 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बोई जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से 2,33,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी होगी, जो कुल क्षेत्र का लगभग 92% है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा के उद्देश्य से कल मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्कूलों में बालिकाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सुविधाओं, पृथक एवं कार्यशील शौचालयों, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सैनेटरी नैपकिन वितरण व्यवस्था, प्रयुक्त नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं तथा जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने दादाजी मंदिर नवनिर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले में ग्राम पंचायत पालखेड़ी में विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को बाल विवाह और दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा लोक अदालत के फायदों के बारे में बताया गया। मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इंदौर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में नामी कंपनियों ने कुल 145 छात्र छात्राओं को नौकरी के लिए चयनित किया। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में नए सत्र के प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बैतूल की ग्राम पंचायत घाट प्रपरिया में कठपुतली के खेल के जरिए ग्रामीणों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया। और गुना में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के तहत बीनागंज में एक विशेष करियर काउंसिलिंग सत्र में एयरफोर्स अधिकारियों ने छात्रों को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी इंदौर है। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी प्रस्तुयते कार्यक्रम दिव्य धारा।

अभी आप सुन रहे थे संस्कृत कार्यक्रम। वार्ताकार थी निरुपमा त्रिवेदी। कार्यक्रम संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। ये आकाशवाणी इंदौर है। प्रस्तुत है सुनहरे पल।

दूजे के लिए। इस फिल्म का गीत आवाज लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिर वही दिल लाया हूँ, ये है फिल्म का नाम। आवाज मोहम्मद रफी की, बोल मजरूह की, संगीत ओपी नय्यर का।

सरस्वती चंद्र। इस फिल्म के लिए मुकेश और लता मंगेशकर का गाया गीत सुनिए। शब्दकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आरजू, ये है फिल्म का नाम। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, बोल हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुनते हैं ये गीत।

मेरा नाम जोकर। इस फिल्म के लिए मुकेश का गाया गीत सुनिए। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, ये आकाशवाणी इंदौर है। 8 बजा चाहते हैं, समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिलता।

0: पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
4: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो कूड़े कचरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप एक पड़ाव चयनित किया गया है।
3: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
6: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
7: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों चार दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को एक गोल और एक असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के दो गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1

आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से

0: नरेंद्र देव पांडे और भोपाल से अनीता सक्सेना। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

जैसे घने जंगलों के बीच कोई शांत सी नदी चुपचाप बहती हुई जीवन को सींचती रहती है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं टिमटिमाता दीपक दिशाओं को भरोसा देता है, वैसे ही कुछ व्यक्तित्व अपने समय से आगे बढ़कर समाज की चेतना में उजास भरते हैं। ऐसी ही एक दीपशिखा का नाम है मंगई गोमांगो, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने जनजातीय समाज की ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर उसे उजालों का संसार सौंपा। उनकी जीवन यात्रा ये बताती है कि वो केवल एक भाषाविद नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानवतावादी थे जिन्होंने सुदूर वनों में रहकर अपनी तपस्या और लगन से अपने समाज को एक नई लिपि दी, अक्षरों की रोशनी दी और उन्हें आत्म गौरव के साथ जीना सिखाया। मंगई गोमांगो का जन्म 16 जून सन 1916 को ओडिशा के रायगढ़ा जिले के मरिचगुड़ा नामक एक सुदूर पहाड़ी गांव में हुआ था। घने जंगलों और जलप्रपातों से समृद्ध प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र में सोरा जनजाति की घनी आबादी थी। मंगई गोमांगो का जन्म इसी सोरा समाज के एक अत्यंत संभ्रांत और कुलीन परिवार में हुआ था। सोरा समाज में गोमांगो का अर्थ होता है मुखिया या प्रधान। उनके पूर्वज और पिता गांव के मार्गदर्शक थे। परिवार में आध्यात्मिक चेतना और जड़ी बूटियों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फले फूले सोरा जनजातीय समाज में एक गहरा सन्नाटा भी था। आधुनिक शिक्षा से वो सभी बहुत दूर थे। युवा मंगई ने देखा कि उनके समाज की अपनी एक समृद्ध और संगीतमय भाषा तो है, लेकिन लिपि के अभाव में उनका इतिहास, उनके लोकगीत और औषधीय ज्ञान मौखिक परंपरा में ही हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस भाषाई पिछड़ेपन और बाहरी दुनिया के शोषण ने उनके भीतर एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया।

सन 1936 के शुरुआती महीनों में मात्र 20 वर्ष की आयु में मंगेई गोमांगो ने सोरा संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठिन मार्ग चुना। वो मरिचगुड़ा के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी में एकांतवास के लिए चले गए। मन में अपनी भाषा को एक स्वरूप देने का विचार था और इसी विचार के साथ वो कठिन साधना और ध्यान में लीन हो गए। बताया जाता है कि 18 जून सन 1936 की सुबह ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट कुछ विशिष्ट आकृतियों में बदल रही है। उन्होंने उन आकृतियों को ताड़ के पत्तों और पत्थरों पर उकेरा। इस तरह 24 अक्षर उनके पास थे। इसे सोरांग सोमपेंग लिपि का नाम दिया गया। यूं सोरा भाषा की ध्वनि को एक आकार मिला और ये लिपि उच्चारण की दृष्टि से बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी। अक्षरों का ये अवतरण केवल एक लिपि का जन्म नहीं था, बल्कि ये सोरा अस्मिता का पुनर्जन्म था। उनके इस महान आविष्कार को समाज में फैलाने के लिए सबसे पहले उनके बेटे और दामाद उनके शिष्य बने। लेकिन असली चुनौती सामने थी, इस नई लिपि को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन मंगेई गोमांगो केवल एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने सोरा समाज की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मरिचगुड़ा के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों में अक्षर स्कूल खोले। चूंकि दिन में सोरा समुदाय के लोग खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करने जाते थे, इसलिए ये स्कूल सूर्यास्त के बाद रात्रि पाठशालाओं के रूप में चलते थे। मंगेई गोमांगो हाथ में जलती हुई मशाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी वर्णमाला लेकर गांव-गांव जाते और बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों को अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाते थे। उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन और रूढ़िवादी तत्व इस भाषाई साक्षरता को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, तो दूसरी तरफ खुद सोरा समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग इसे एक जादुई और अस्वाभाविक घटना के रूप में रेखांकित कर रहे थे। लेकिन मंगेई गोमांगो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों, अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प से सबको झुका दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नई लिपि का प्रचार प्रसार नहीं था, वो सोरा समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ताड़ी और मदिरा के सेवन ने सोरा समाज को खोखला कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने अंधविश्वास, चिकित्सा की जगह तंत्र मंत्र और पशुओं की बलि देने की कुप्रथाओं के खिलाफ तार्किक तथा आध्यात्मिक चेतना का युद्ध लड़ा। उनके इस असाधारण ज्ञान, नैतिक आचरण, समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा के भाव को देखकर सोरा समाज और अन्य विद्वानों ने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पंडिता की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी ये साधना लगातार जारी रही।

पंडिता मंगेई गोमांगो का आयुर्वेद और पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अद्भुत था। उन्होंने रायगढ़ा, कोरापुट और नियमगिरी की पहाड़ियों के घने जंगलों में भ्रमण करके सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान की। उन्होंने इनके औषधीय गुणों और मिश्रण की विधियों को अपनी लिपि में लिखकर इस ज्ञान को संरक्षित भी किया। उन्होंने अपने निवास स्थान मरिचगुड़ा को एक चिकित्सा केंद्र में बदल दिया। उन दिनों ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अस्पताल या डॉक्टर नहीं होते थे। उन्होंने मलेरिया, गंभीर त्वचा रोग, सर्पदंश और पेट की घातक बीमारियों का सफल इलाज किया। और विशेष बात ये कि उनका ये काम पूरी तरह निशुल्क और सेवा भाव से प्रेरित था। इसके साथ ही उन्होंने सोरा जनजाति के बौद्धिक पोषण पर भी ध्यान दिया तथा साहित्य रचना की। सबसे पहले तो उन्होंने सोरांग सोमपेंग लिपि की पहली प्रामाणिक वर्णमाला की पुस्तक और बुनियादी व्याकरण की रचना की, ताकि भाषा की शुद्धता हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोरा भाषा में उच्च कोटि के भजनों और कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों को पिरोया। उनके द्वारा रचित प्रार्थनाएं आज भी सोरा समाज के विद्यालयों और मंचों पर अत्यंत श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। सोरा समाज में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं और अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। ये सारी

रुके नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी मानसिक रूप से सक्रिय थे। वो अपने बेटों, दामाद और अन्य युवाओं को अपने पास बुलाते और सोरांग सोमपेंग लिपि के प्रचार प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करते। इसी तरह सक्रिय रहते हुए सन 1980 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके द्वारा बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। सरकार और भाषाविदों ने सोरांग सोमपेंग लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया और आज भी प्राथमिक शालाओं में सोरा बच्चों की शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे आज डिजिटल फॉन्ट में परिवर्तित करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है और आज भी सोरा समाज के लोग 18 जून को लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत लोक संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपको सुनवाते हैं प्रीतम लाल क्षमा कीजिए प्रीतम मालवीय और साथियों की गाई ये मालवीय लोक रचना।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत और इस कार्यक्रम में हम आपको प्रीतम मालवीय और साथियों की आवाज में ही सुनवाते हैं एक और मालवीय लोक रचना।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आवाज है प्रीतम मालवीय और साथियों की, और आप इनसे सुनेंगे मालवीय लोक रचना।

प्रीतम मालवीय और साथियों की आवाज में गाई इस मालवीय लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत लीजिए इस कार्यक्रम में सुनी शुभा मुद्गल की आवाज में ये रचना।

शुभा मुद्गल की आवाज में गाई इस रचना के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त तो होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत लीजिए, इस कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 10 बजा चाहते हैं जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से रिले की जाएगी।
1: भोपाल केंद्र है, अब आप सुनेंगे सीधी जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्रा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सीधी जिला इन दिनों विकास, जनकल्याण और सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलाए गए विशेष जनकल्याण अभियान के अंतर्गत जिले के सीधी, मझौली, कुसमी और रामपुर नैकिन विकास खंडों में व्यापक स्तर पर जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य उन परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जो अब तक विभिन्न कारणों से वंचित रहे। सीधी विकासखंड में आयोजित जनकल्याण शिविर में 11,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। वहीं मझौली में 3 दिवसीय शिविर में 14,755 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 14,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में कृषक चौपालों का आयोजन किया गया। रामपुर नैकिन और कुसमी में आयोजित चौपालों में किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल संरक्षण और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद जिले के सभी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसके साथ ही स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का 100% नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्वागत तिलक, पुष्प और पाठ्य सामग्री देकर किया गया। विशेष भोज, बाल सभाएं और प्रेरणादायी गतिविधियां आयोजित की गईं। वहीं जिले में शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए 6 दिवसीय शिक्षक प्रेरणा व गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। सीधी जिले में समान नागरिक संहिता UCC पर व्यापक जन सुझाव अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलरिया में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विषय के पक्ष और विपक्ष में तार्किक एवं तथ्यपरक विचार प्रस्तुत किए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। कुसमी विकासखंड की ग्राम पंचायत पौड़ी के घटिया टोला स्थित बैगा बस्ती में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ था। नए नलकूप खनन से लगभग 70 परिवारों के 250 से अधिक ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है। मानस भवन सीधी में आयोजित लोक कल्याण मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डिजिटल भुगतान और वित्तीय साक्षरता पर विशेष जोर दिया गया। मेले में पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन प्रक्रिया, UPI भुगतान, QR कोड उपयोग तथा डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानकारी दी गई। स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए उत्पाद स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे।

इन स्टॉलों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मझौली क्षेत्र में 500 सहायता समूहों को 25 लाख रुपए का बैंक ऋण प्रदान किया गया है। सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सांसद डॉ. राजेश मिश्र और जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों सीधी रेलवे स्टेशन से कुचवाही तक निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक का संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ विस्तृत निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने रेलवे ट्रैक के आसपास जल निकासी की समुचित व्यवस्था, संवेदनशील एवं कमजोर स्थलों की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीधी जिले में योग को जनभागीदारी का उत्सव बनाते हुए 51 स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और विधायक रीति पाठक की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने स्वस्थ आयु के लिए योग की थीम पर बल दिया। धार्मिक, प्राकृतिक एवं शैक्षणिक स्थलों सहित पूरे जिले में हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। बरचर आश्रम में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की उपस्थिति में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस के अवसर पर बीते दिनों कैलाश तरुण वृद्धाश्रम पनवार में जिला प्रशासन द्वारा तातश्री सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर उनके प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त की गई। सीधी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है आपके फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन।

नमस्कार श्रोताओं, आपके पसंदीदा कार्यक्रम मन भवन के साथ मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त राजेश जैन। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं साथी फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने, धुन बनाई है नौशाद ने, शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सोमन, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार, छत्रपति शाहूनगर हिंगोली से रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत, टिक्कू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा और गौतम हिंगोले, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक और जिया उल हक डावर, मालीपुरा बिजलपुर से मोहनलाल चौहान, ललिता, प्रियंका परमार, पंकज, सोनू, नितिन, राहुल, गुंजन, मुस्कान चौहान, अदव्या, अंकित, सलोनी, लड्डू, काना और रिशु चौहान। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने।

आंधी। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाया गीत सुनी। इसे लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और जावेंद्र वर्मा, अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब, मुश्तबा रऊफ और शाहिद खान, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके परिवार के सभी सदस्य, दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनेर अकोला से महादेव दामोदर और अरुणा दामोदर, मोहाली से हमें इस गीत के लिए लिखा है टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

किशोर कुमार की आवाज में सुनिए मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत। इस गीत को सुनना चाहा है बोरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा, कुश मुणत और इनके बहुत सारे दोस्त। इंदौर से अनिल कवचाले, सबीहा, सुषमा, सीमा, स्मिता, श्वेता, पूजा, राखी और मीनू कवचाले। इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफी मंसूरी। सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन, प्रभा, कृष्णा, विराज, अर्नव और काव्यांशी कटारिया। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

शराबी। यह है फिल्म का नाम, आवाज़ किशोर कुमार की, अनजान और प्रकाश मेहरा ने इस गीत को लिखा है, बप्पी लहरी ने धुन बनाई है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। जरूड़ वरूड़ महाराष्ट्र से बाबा साहब बौड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, चंद्र प्रकाश वाड़ोदे और इनके परिवार के सभी सदस्य। शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित और इनके परिवार के सभी सदस्य। लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरिंगी से भागवत।

साथ साथ, यह है फिल्म का नाम। आवाज़ चित्रा सिंह की, बोल जावेद अख्तर के, संगीत कुलदीप सिंह का। अनुरोध करने वाले हमारे श्रोता हैं धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर रयान, फैजान, सुमेरा कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी।

जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। पाठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री, धनश्री। बल्लारथा से सूरज जी, प्राची और एकलव्य। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन वर्मा। मुन्ना भाई पिंकी स्वर्णकार, रितेश, कृष्णा और पिहू स्वर्णकार। पुणे से प्रियंका, आर्या, पंकज और इनके बहुत सारे दोस्त।

आरजू। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर का गाया गीत सुनी। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत बद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। अनुरोध करने वाले हमारे श्रोता हैं कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीनू श्रीमाली, आदित्य मीनू राज श्रीमाली, श्रीराम श्रीमाली, सुशीला मंजू मालती श्रीमाली और इनके परिवार के सभी सदस्य। बहरामपुर टेमा से तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समरराज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप, राशि और शीतल साबले। धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता, स्वाति, माही, पूजा, शरद और इनके परिवार के सभी सदस्य।

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत सुनिए, बोल अख्तर रोमानी के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। अनुरोध आप सबका। लाभ्या भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, रितिक, कुणाल, केतन बामनिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। इंदौर से ही बीआर राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज और इनके बहुत सारे दोस्त। मालेगांव से दत्ता घायाड़, सुनीताबाई, सानिका और गजानन घायाड़। राजपुर से संतोष यादव, शिवराम यादव, दुर्गा, निखिल, अंकित, नंदिनी, किरण, रेखा, सोनू, कमलेश यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक, परवेज, रोजमीन, तैमूर और इनके बहुत सारे दोस्त।

सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा। ग्राम लोहारी से राजेश धनजे, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री धनजे। मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा और नीतू वेद। मेहरनगर महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, सरिता, प्रिंस, एकांश, वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि गवांडकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, रुबीना वसीम, नदीम, अमन, पूनम शर्मा और चीना शेख। महसूल से हुमेरा नाज, सुमेरा, अबीहा, अरहान, हमजा और मुजम्मिल

इस गीत के साथ ही आज का मन भावन कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त राजेश जैन को अनुमति दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भवन, ये आकाशवाणी इंदौर है। 11 बजे हैं, अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले किया जाएगा।

0: सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे ये फोन इन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। सादर वंदन और अभिवादन के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के विषय पर आपसे बातचीत का सिलसिला। दोस्तों जिस तरह बदलते मौसम के साथ हमारा रहन सहन बदलता है, उससे पहले हम अपना खान पान बदलते हैं। गर्मी में क्या खाना है या पीना चाहिए, सर्दियों में क्या और आने वाला मौसम यानी बारिश में खान पान कैसा हो, इस बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी कम होती है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका सेवन समय समय पर करना लाभदायी होता है, और यदि उन्हीं खाद्य पदार्थों का सेवन गलत समय पर कर लेते हैं तो उसका गलत असर हमारे स्वास्थ्य पर होने लगता है। जैसे केला, ककड़ी, संतरा, दही, चॉकलेट, चावल इत्यादि। आज इसी विषय पर आपसे बातचीत करेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ के सेवन का सही समय कौन सा होता है। सुनते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
2: कौन दीदी बोल रही हैं, कौन मैडम जी बोल रही हैं?
1: जी हम बोल रहे हैं प्रियंका, आपकी अपनी रेडियो संगीनी कार्यक्रम है आज बात आपकी गीत हमारे। अब आप अपना परिचय दे दीजिए।
2: कहते हैं कि चांदनी रात हो तो बरसात बुरी लगती है, और शरीर में दर्द कष्ट हो तो हर बात बुरी लगती है, और आकाशवाणी मध्य प्रदेश में भोपाल में अगर फोन लग जाए तो सब बात हरी लगती है और बड़ी अच्छी लगती है।
1: जी जी, तो आज
2: हरी लगती है जी। प्रियंका मैडम जी आपसे बहुत दिनों के बाद बात हो रही है।
1: जी जी,
2: और मैं ग्राम कल्पा जिला सतना से आपका मजनू दीवाना चांद मोहम्मद खान श्रोता बोल रहा हूँ। आप
1: जी बिल्कुल हम पहचान गए, लेकिन आपका परिचय हमारे जो अन्य श्रोता होते हैं उन्हें देना जरूरी होता है, इसलिए हम आपसे नाम पूछते हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं पूछते हैं।
2: मैडम जी आपसे बात एक बार और हुई थी, काफी दिन हो गए।
1: जी बिल्कुल, दो तीन बार हो चुकी है।
2: इत्तेफाक भगवान की कृपा हो गई, परवरदिगार की दुआ हो गई कि आप ही से बात हुई है मैडम जी।
1: अच्छा, अब आज हम बात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा विषय है कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। जैसे हम कभी कई बार केला रात में खा लेते हैं तो नुकसान करता है, तो इस बारे में आपके पास जो भी जानकारी है हमें और हमारे श्रोताओं को दीजिए।
2: अब मेरा मतलब यही कहने का है मैडम जी कि जो खान पीन की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और खाने पीने का सामान होता है उसे समय समय पर ही खाना चाहिए। सभी श्रोताओं से कहना है, जितने ऑल वर्ल्ड के श्रोता सुन रहे हैं, क्योंकि जैसे दिन में दोपहर

0: में तो दाल चावल का ही सेवन करना चाहिए और ज्यादा खटाई अटाई इस्तेमाल दोपहरी में ही करो, रात में ना करना चाहिए क्योंकि रात में सर्दी जुखाम का बहुत बड़ा लफड़ा रहता है और चावल बहुत नुकसानदायक होता है, ये भी मैं बता दूं। और खटाई तो रात में नाइट में बहुत ही नुकसानदायक है मैडम जी, और दिन में कितना भी खाते रहो कोई दिक्कत नहीं रहती क्योंकि धूप कड़ी होती है और समय सही रहता है और रात में थोड़ी ठंड महसूस होने लगती है, तो ये ठंडी वाले जो आइटम होते हैं। और ये बता दूं कि ठंडे कुछ आइटम खाने के बाद पानी भी पीना नुकसानदायक होता है मैडम जी।
1: अच्छा
0: जी जी। और गुड़ जो है तो गुड़ का सेवन तो 12 महीने अगर करते रहो मैडम जी तो बहुत ही सेहत के लिए लाभकारी होता है। और इस समय तो आम का पन्ना और प्याज खूब खाइए तो गर्मी से निजात मिलेगी। और जामुन इस्तेमाल करिए, तो जामुन खाने से मैं बता दूं मैडम जी सबसे बड़ा लाभ, अगर जामुन बंद के आप एक महीने खा लें तो समझ लो ये शुगर की बीमारी तो हो ही नहीं सकती, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, और आंखों की जोत नहीं जा सकती। ये आंवला और जामुन में बहुत जबरदस्त गुण है
1: जी। ये बात तो आपने बहुत ही कारगर बताई है कि जामुन और आंवला जो है ये आपको शुगर फ्री रखता है,
0: ये बहुत फायदेमंद है मैडम। जैसे आंवला तो अभी नहीं मिलता, समय के मुताबिक मिलता है, लेकिन क्योंकि अगर जामुन अभी मिल रही है तो जामुन बंद करके अगर कोई भी भाई बहन जितने श्रोता बंधु सुनते हैं तो सुबह के टाइम चाहे खरीद के खाएं चाहे झोल, हमारे यहाँ तो जामुन का अंबार लगा हुआ है तो मैं भोपाल भेज दूं मैडम जी, ऐसे रोज सुबह टाइम मतलब यानी कि कुछ नाश्ता पत्ती ना करके ऐसे जामुन से ही सेवन करिए, तो मेरा दावा है कि कोई बीमारी कोई मर्ज नहीं आ सकती है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं फेल कर
1: जी। तो आपका जो कहने का हम अगर निष्कर्ष निकाले तो ये हो सकता है कि जो मौसमी फल होते हैं उनका सेवन जरूर करना चाहिए और अधिक से अधिक सुबह के समय करना चाहिए।
0: हाँ सुबह के टाइम सही रहता है मैडम, ये फायदेमंद रहता है। और फिर तो दिन भर खाते रहो तो कोई अर्थ नहीं निकलता क्योंकि खाना खाने के बाद कोई और चीज का सेवन करो तो वो नुकसानदायक ही होता है, ये मैं सत्य बता रहा हूँ।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चांद मोहम्मद जी, और इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए और इतनी लाभप्रद जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को देते रहिए। शुक्रिया,
0: नमस्कार जी।

0: हेलो, हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम, गुड
0: आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है गई है।
1: जी मैम। अभी आ रही मैम
0: हाँ अभी आ रही है, बिल्कुल बताइए अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी
1: जी।
0: बता दिए।
1: मैं पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर, जिला रायबरेली से। थैंक
0: राय बरेली से पिंकी जी, स्वागत हमारे कार्यक्रम में आपका। कैसी हैं आप?
1: यू मैम। हम बहुत मैम आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। आप बताइए आप कैसी हैं।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे श्रोताओं से जब इतनी अच्छी बात होती है तो हम और अच्छे हो जाते हैं। पिंकी जी
1: जी और
0: आज
1: मैम
0: ही
1: हम लोग आपका इंतजार थे, और जब आपसे मुलाकात हो जाती है ना तो मैम बहुत खुशी मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: जी, और खुशी मिलती है तो आपका दिन भी बहुत अच्छा हो जाता होगा, है ना?
1: जी मैम, क्योंकि मैम रेडियो सुनने का हमें बहुत शौक है, और
0: जी
1: जब
0: जी
1: रेडियो पर अपनी आवाज सुनाई देती है ना तो मैम इसकी खुशी और भी ज्यादा
0: अलग
1: हो
0: ही
1: जाती है।
0: होती है, बिल्कुल। तो ये फोन इन कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा लाभ है, जो सबसे बड़ा
1: जी
0: फायदा है, वो यही है कि श्रोता अपनी आवाज भी सुन सकते हैं।
1: जी और
0: जी
1: मैम सभी श्रोताओं की भी आवाज सुनने को मिलती है, और देश विदेश से मतलब श्रोता जुड़ते हैं
0: जी
1: और अपने क्षेत्र के बारे में विशेषताएं बताते हैं, तो मैम बहुत अच्छा लगता है और
0: जी जी
1: सब
0: जी
1: चीजें जानने को मिलती हैं रेडियो के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
0: जी पिंकी जी, अब हम आपसे आज के विषय के बारे में बात करें।
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, आज हमारा विषय है कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। इस विषय में आप क्या जानती है, बताइए।
1: जी मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैम जैसे कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हमें मैम ज्यादा करके तो मैम दही है, छाछ है, मट्ठा है, ये सब चीजों का सेवन करना चाहिए, ना कि
0: लेकिन
1: कोल्ड ड्रिंक
0: हाँ,
1: का और चाय का,
0: बिल्कुल
1: ऐसी गर्म चीजों का मतलब खान पान नहीं करना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: और
0: लेकिन
1: मैम योगा भी
0: हम ये
1: करना
0: जानना
1: चाहिए
0: चाहते
1: क्योंकि
0: हैं।
1: अभी हम लोगों ने मतलब योगा दिवस भी मनाया अंतर्राष्ट्रीय, तो मैम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख।
0: लेकिन हम ये जानना चाहते हैं पिंकी जी कि जैसे आपने कहा कि दही का सेवन करना चाहिए, छाछ मठा वगैरह, तो इसका एक विशेष कोई समय आप बताएंगे कि कब करना चाहिए, या दही का सेवन गर्मियों में कब ज्यादा लाभकारी होता है?
1: जैसे हम सुबह खाना खाते हैं तो उसके साथ ही खाएं, और
0: जी
1: मैम जैसे करके अगर दही छाछ को हम खाते हैं तो मैम ये भी हमारे सेहत मतलब लाभदायक होता है। जी
0: अच्छा, तो चलिए पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने
1: और
0: हमें ये
1: मैम
0: जानकारी दी।
1: गाँव में तो चीनी मिक्स करके मतलब जैसे इसका घोल बना के पीते हैं, खाते हैं ना, तो ऐसे में मतलब ज्यादा पसंद करते हैं खाना।
0: जी, चलिए पिंकी जी, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: जी। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम और जगह का नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: हाँ दीदी, मैं भागचंद साहू जी बोल रहा हूँ, राजेंद्र नगर गंज वासुदा से।
0: जी। साहू जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल।
0: और आज हम जानना चाहते हैं कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। अब उसमें से कोई भी खाद्य पदार्थ आप चुन सकते हैं कि जिसके बारे में आप
1: हाँ
0: जानकारी दें कि इसका सेवन कब करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात।
1: तो दीदी, भी तो देखो खाद्य पदार्थ चीजों में तो देखो बहुत चीजें आती हैं, केला भी है, सेब भी है, ठीक है जी, ऐसी चीजें सभी आती हैं,
0: जी। तो
1: जिनका
0: हम
1: सेवन
0: जानना चाहते
1: जरूरी है।
0: हैं कि इनका सेवन का समय जो है वो कौन सा समय ज्यादा लाभकारी है।
1: दीदी वो तो देखो समय के अनुसार सब फल आते हैं, और समय के अनुसार खाना चाहिए वो,
0: जैसे
1: बिल्कुल समय के बिना, समय के तो खाना बिल्कुल सही नहीं है।
0: जैसे आप बताइए कि कौन सा फल या कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जो बिना समय नहीं खाना चाहिए।
1: दीदी वो तो समय से खाओगे तो सही रहेगा, जैसे अभी आम का मौसम है, आम आ रहे हैं तो आम खा सकते हैं, केला
0: कब खा
1: आ
0: सकते हैं
1: रहा
0: ये
1: है।
0: बताइए, सुबह ज्यादा लाभकारी होता है या दोपहर में या शाम में।
1: नहीं, सुबह सुबह में लाभकारी होता है, केला खाओगे बहुत लाभकारी होता है,
0: और
1: और सेब खा लो वो भी लाभकारी है, अंगूर वगैरह भी आप आहार में ले लो सुबह के टाइम,
0: सुबह के समय। जी, बहुत
1: बिल्कुल ये सब चीजें पौष्टिक आहार है और
0: पौष्टिक आहार
1: फायदेमंद
0: है,
1: चीज है ये।
0: और सुबह के समय अगर हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को ये 4 गुना लाभ देता है। ठीक
1: अरे
0: है
1: बिल्कुल, क्यों नहीं देगा दीदी,
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल देगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया साहू जी, आपने हमें फोन किया और ये जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को बताई। नमस्कार।
1: बिल्कुल दीदी, नमस्ते।

0: जियो पलट जाओ जियो।
1: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या,
2: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: बताइए अपना परिचय, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं ओम प्रकाश नेमा विद्यानगर से अलीखड़ा जिला तमोल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा
0: जी ओम प्रकाश जी स्वागत है, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे। तो बताइए खाद्य पदार्थ के सेवन का सही समय क्या है और आप कौन सा खाद्य पदार्थ चुनकर हमें बताएंगे कि इसे कब खाना चाहिए?
1: देखो मौसमी जो रहते हैं ना, फल सब्जी वगैरह रहती हैं, तो उसका सेवन करना चाहिए
0: जी।
1: और जी खाना में सलाद अलाद वगैरह ये जरूरी है लेना।
0: ये कब लेना चाहिए सलाद, हमारे श्रोताओं को बताएंगे आप? सुबह लेना चाहिए या नाश्ते के समय लेना चाहिए, लंच के समय लेना चाहिए या शाम को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ आप बताएंगे?
1: सुबह ही लेना चाहिए।
0: ठीक है, तो आपका कहना है कि सलाद सुबह खाना चाहिए। और ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिन्हें हमें शाम को खाने से अवॉइड करना चाहिए या सुबह ले लेना चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए, ऐसी कोई जानकारी आपके पास हो तो बताइए हमें।
1: शाम के समय क्या है कि एक तो समय का विशेष ध्यान रखें कि समय से पहले ही खाना खा लें। माने ऐसा नहीं कि रात की 10 बजे या 11-12 बजे खा रहे हैं अपन, ये गलत है
0: जी जी।
1: और शाम के समय ऐसी चीजें खाएं जो जल्दी से जल्दी
0: पचने में आसान हो।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे फोन इन कार्यक्रम है। जरूर
1: रखा गया है इस बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में।
0: जी बिल्कुल, हम आपसे विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं जिला मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन पांडे बात कर रहा हूँ।
0: जी हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं
1: और
0: आप
1: ये विषय जानना चाहते हैं हम।
0: जी? विषय हमारा है कि जो हम कई बार केला, संतरा या अंगूर या अन्य कोई ऐसे खाद्य पदार्थ है, जैसे दही हो गया और चॉकलेट वगैरह है, आइसक्रीम है, तो इनको हमें कब खाना हमारे सेहत के लिए बेहतर होता है ये बताइए। या इससे अलग और कोई खाद्य पदार्थ जो आप जानते हो तो उसके बारे में बताइए हमें कि कब उसका सेवन सही होता है।
1: ये इन सब चीजों का सेवन तो जब हम ये व्रत उपवास वगैरह रहते हैं और जो है इनको जब अपनी ज्यादा इच्छा हो तो तभी खाना, तो ज्यादातर अपने को भूख वगैरह लगे तो।
0: अच्छा, तो अगर हम ये कहें कि हमारा केले खाने का मन रात में बहुत हो रहा है तो क्या खा लेना चाहिए हमें?
1: तो ये इन फलों का उपयोग हम ज्यादातर व्रत और उपवास में ही ज्यादा करते हैं।
0: जी जी
1: और वो जो है,
0: लेकिन समय कौन सा सही रहता है? जैसे केला सुबह ज्यादा लाभदायक होता है, वो आपका वजन बढ़ाता है, तो इस तरह और कोई खाद्य पदार्थ की बात हम आपसे जानना चाहते हैं।
1: हाँ, जैसे जैसे
2: हे राजू,

0: या अन्य किसी मौसम में कौन सी चीज सुबह ज्यादा लाभकारी होती है, दोपहर में, शाम को, रात को, तो इस तरह की कोई जानकारी हमें बताइए और हमारे श्रोताओं को भी बताइए।
1: देखिए मैम, ये थोड़ी सी बात और रखने देगी, लापरवाही तो हम सब करते हैं खाने में
0: जी,
1: सतर्कता नहीं बरतते तो हमारी
0: बिल्कुल
1: तबीयत खराब हो जाती है।
0: इसीलिए तो हमने ये विषय रखा है कि आप श्रोताओं के माध्यम से ये बात और ये जानकारी एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचे कि सही समय पर सही चीज खाना ही लाभ देता है। कई बार बच्चे जिद करते हैं, केला रात में मांगते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि केला रात को नुकसान करता है, दही नुकसान करता है या संतरा खा लिया। तो यही चीज हम जानना चाहते हैं और हमारे श्रोताओं तक भी ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि सही समय पर सही सेवन किसी वस्तु का लाभ देता है। तो कुछ उदाहरण आप हमें बता दीजिए जल्दी से।
1: मैं अपना उदाहरण मैं स्वयं कर दे दूं, सुबह से मैम जी मैं तो कुनकुना पानी पी लेता हूं। और रही बात खाने की, तो दिन भर दुकान पे रहता हूं, रह रहकर मैं अपनी स्थिति बता दूं, जलेबियां खाता रहता हूं, लेकिन मैं खाना एक टाइम ही खाता हूं।
0: अच्छा
1: हाँ, और पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करता हूँ, पानी को स्वच्छता के माध्यम से पीता हूँ। तो सभी से निवेदन है कि पानी का सेवन करें, लेकिन उसे समझबूझ के करें कि ये हमारे पीने योग्य है कि नहीं।
0: जी जी जी
1: अधिकतर बीमारियां पानी से होती हैं। बात खाने की हुई है तो लापरवाही सभी बरतते हैं, तो मैं तो सबसे निवेदन करूंगा
0: जी
1: कि हमारे बड़े बुजुर्ग यदि घर में हैं,
0: हाँ,
1: नहीं तो हमें जानकारी रखते हुए खाद्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए जीवन में, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत जल्दी बिगड़ जाती है।
0: जी जी क्योंकि आज खान पान इतना शुद्ध नहीं है।
1: और मैम जी देखिए, अब शुद्धता की बात हुई तो मैं तो किसानी क्षेत्र में रहता हूँ, तो यहाँ पर खाद पाउडर जो होता है फसल में ज्यादा से ज्यादा सींचा जा रहा है, पूरे भारत में सींचा जा रहा है। मूंग अभी आई है, बीज होता है, उसे इसी के माध्यम से उर्वरक शक्तियों के माध्यम से किया जाता है, और अंततः उसे एक ऐसे खाद सामग्री सींची जाती है कि वो अंततः वो फसल सूख जाती है और उसे हार्वेस्टर के माध्यम से काट लिया जाता है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक उसमें जहर ही जहर सींचा जाता है। तो हम कहाँ तक सतर्कता बरतें हैं, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम सभी लोग सतर्क रहें ताकि हमारा जीवन अच्छे से रहे।
0: जी जी शुक्रिया कमलेश जी, ये आपने बहुत जानकारी अच्छी दी है कि जो खाए वो शुद्ध खाए, प्योर खाए और अच्छे से अच्छा खाए।
1: और अंत में यही कहूंगा कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा
0: मन। धन्यवाद। कभी

0: हेलो।
1: हाँ जी, ग्राम बालोदा लखा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश है, कन्हैयालाल प्रजापति।
0: जी कन्हैयालाल जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ बस बढ़िया, आनंद मंगल है।
0: बढ़िया, आनंद मंगल चल रहा है।
1: हाँ अभी पानी का इंतजार में बैठे हैं सभी, साथ खेती है हमारे पास, तो अगर
0: हाँ।
1: सोयाबीन लगाएंगे, अगर पानी अच्छा गिर गया तो सोयाबीन लगाएंगे, उसके इंतजार में बैठे हैं। हाँ
0: तो ये बताइए कि आप जो ये सोयाबीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये
1: हाँ
0: हमारे खान पान में किस तरह से असर करती है सोयाबीन?
1: ये तो विटामिन बहुत बढ़िया, इसके अंदर तो इसका तेल वगैरह भी निकलता है और कई
0: तो सोयाबीन
1: हाँ
0: किस तरह से खाना चाहिए, आप ये बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: सोयाबीन इसको है ना, वो गला करके खाना चाहिए थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या है कि विटामिन सबसे अधिक इसमें रहता है। क्या
0: अच्छा, और ये कब खाना चाहिए, सुबह को या
1: ये
0: रात में?
1: सुबह में, सुबह में, सुबह में
0: अच्छा, तो इसे क्या रात में गला कर रखते हैं फिर सुबह खाना चाहिए, या आप 2 घंटे पहले गला दें और खा लें, ऐसा
1: हाँ दो
0: कोई?
1: दो दो 3 घंटा पहले गला करके फिर बाद में खाना शुरू कर दो, और विटामिन एक नंबर रहता है।
0: अच्छा, और उसका पानी वो जो निकलता है गलाने के बाद में, वो पानी किस उपयोग में लाया जा सकता है?
1: हाँ वो पानी भी ले सकते हो, क्या पीने के लिए भी ले सकते हो, वो भी अच्छा पानी है।
0: चलिए कन्हैयालाल जी, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि जो अब फसल आने वाली है तो उसको
1: हाँ
0: लेकर
1: जी
0: भी जो हमारे श्रोता हैं तो वो थोड़े से जागरूक हो जाएंगे कि सोयाबीन हमारे लिए फायदेकारक है और उससे विटामिन मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैयालाल जी, जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से और सुनते रहिए कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, और इसके साथ ही और दूसरे कार्यक्रम भी।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: बिल्कुल स्वागत है आपका, कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
0: हाँ जी मैडम
1: जी नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम।
0: मंदसौर से बोल रहा हूँ, मनोहर लाल मेहर।
1: जी स्वागत है मनोहर लाल जी, कैसे हो आप?
0: बढ़िया हूँ मैम।
1: बढ़िया है, बारिश की क्या तैयारियाँ चल रही है आपके यहाँ?
0: बारिश तो अभी हुई नहीं है, बारिश की संभावना है, पर गर्मी बहुत पड़ रही है।
1: गर्मी हो रही है और संभावना है, तो बारिश में ये बताइए कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जहाँ हमें उसे सुबह खाना चाहिए या रात में खाना चाहिए, दिन में, ऐसी कौन सी जानकारी है आपके पास?
0: अभी तो हल्का फुल्का भोजन लेना चाहिए, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, बारिश हुई नहीं है। सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि हल्का फुल्का भोजन ले, ये तेल की जो बाजार की जो चीजें हैं ये खाना बंद कर दे, और अपने जो घर पे जो जैसे कोई दलिया बनाओ, जैसे हल्की फुल्की कोई चीजें बनाओ तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा।
1: लेकिन ये है कि दलिया तो हम शाम को खाएं ताकि पाचन भी आसान हो और हल्का फुल्का भी रहता है, लेकिन
0: हाँ, और सवेरे टाइम क्या है कि वो मूंग की दाल बना लो और रोटी, सादी रोटी खाओ
1: हर रोज
0: हर रोज
1: हाँ,
0: मैम।
1: तो जैसे आपने बताया कि मूंग की दाल, तो हमारे अभी एक पहले कॉलर से बात हुई, उन्होंने बताया कि मूंग किस तरह से फसल में उगाए जाते हैं और उसका किस तरह से फर्टिलाइज करके और हम तक पहुंचता है। तो ये जो मूंग की दाल होती है, या इसके अलावा और कौन सी पौष्टिक चीजें होती है जो जिसकी जानकारी आप हमें देना चाहते हो?
0: पालक वगैरह, मेथी की सब्जी, ये ऐसे कुछ सब्जी ऐसी है जो लौकी की सब्जी है, तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहती है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये समझो और समझा।

0: श्रोताओं, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी, जिसमें हमने जानना चाहा कि किसी भी वस्तु के सेवन का सही समय क्या होना चाहिए। शोध के अनुसार अक्सर ये होता है कि बच्चे जब चॉकलेट मांगते हैं हम उन्हें कभी भी दे देते हैं, लेकिन रात में चॉकलेट खाना इसमें कैफीन बहुत होता है जिसके कारण वो नुकसान करता है। सोने से पहले टमाटर खाना ये भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। संतरा और अन्य खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन पूरी तरह खाली पेट इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान का आज से 30 जून तक समापन किया जा रहा है। 19 मार्च को शुरू हुए इस अभियान के दौरान लगभग 10,514 करोड़ रुपए की लागत से 3,62,000 से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल से प्रदेश सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 33,92,000 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्ग जनों के बैंक खातों में मई माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का अंतरण कर रहे हैं। वेनेजुएला में आज 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और प्रदेश में मानसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम

विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों में लिखकर भेजते हैं। सुनिए गीत हेमलता के स्वर में। फिल्म का नाम दुल्हन वही जो पिया मन भाए। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है बेलई जिला सागर से। श्रोता हैं लक्ष्मण रायकवार, श्रीमती विनीता रायकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरत रायकवार और ऋषि रायकवार। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सरस्वती चंद्र से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और मुकेश ने, गीत लिखा इंदिवर ने, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है राहुल नगर यवतमाल से। श्रोता हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। अगले श्रोता राजावत परिवार हैं, मध्य प्रदेश से। मनमोहन रजावत, मधु रजावत, राशि, रशिद, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कवर कॉलोनी बड़वाह से। श्रोता हैं प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनूराज शिमाली। अगले श्रोता भाटापारा दत्तरिंगी छत्तीसगढ़ से हैं। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

वाला गीत आप सुनेंगे फिल्म जुबेदा से। इस गीत को सुरों से सजाया कविता कृष्णमूर्ति ने, गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार A.R. रहमान। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से। श्रोता हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज़ में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म लम्हे से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं शिवहरी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्तबा, आफिया, रऊफ और शाहिद। अगले श्रोता गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और श्रोता हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: आपकी चाय।
3: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
3: कैसे?
2: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
3: इतना इजी?
2: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
3: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
2: ना भाई ना।
4: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
7: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
6: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
7: वही दोपहर 1 बजे।
6: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
8: इस समय आप हैं हमारे साथ।
9: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
10: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
11: क्या?
10: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
11: वो कैसे?
10: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
11: पर सुनेंगे कैसे?
10: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा।
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
2: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा।
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को

0: बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
0: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का सातवां भाग।

0: धारावाहिक में अब तक आपने जाना, राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्नसेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। कुछ दिनों बाद भुवन मोहिनी की तलाश में राजकुमार इंद्रप्रस्थ आया, जहां के राजा आदित्य सेन ने भुवन मोहिनी को आश्रय दिया था। भुवन मोहिनी ने जब देखा कि उसके आश्रयदाता की बेटी राजकुमारी चंद्रहासिनी राजकुमार के प्रति आसक्त है, तो वो अपने प्रेम का बलिदान करने को तत्पर हो गई। उसने चंद्रहासिनी को विश्वास दिलाया कि वो उसका विवाह राजकुमार से अवश्य करवाएगी। राजकुमार ने संदेशवाहक से भुवन मोहिनी को अपने आवास पर बुलवाया, परंतु हज करके राजकुमारी चंद्रहासिनी भी आ गई। भुवन मोहिनी ने राजकुमार से चंद्रहासिनी को अपनाने का आग्रह किया, परंतु विजय श्रवा ने साफ साफ कह दिया कि भुवन मोहिनी का जो स्थान उसके हृदय में है उसे कोई नहीं ले सकता। इसके बावजूद भी चंद्रहासिनी ने इस सच को स्वीकार कर लिया। तीनों ने मिलकर मेले का भ्रमण किया, जहां राजकुमार के माता पिता मिले। वहां राजकुमार ने राजमाता को आश्वासन दिया कि वो भारतीय सीमा पर आक्रमण करने वाले हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रहासिनी से विवाह करेगा। अब आगे क्या होता है ये सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की सातवीं कड़ी में।
1: सम्राट द्युम्नसेन की जय। सम्राट द्युम्नसेन की जय। सम्राट द्युम्नसेन की जय।
2: समस्त खंड राज्यों के राजा महाराजाओं को भारत सम्राट द्युम्नसेन का यथा योग्य अभिवादन। इंद्रप्रस्थ।

0: मेले के इस पुनीत अवसर पर हम सब अति गंभीर प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं, और ये प्रश्न है भारत पर ह्यूणों का आसन्न आक्रमण। हम देख रहे हैं कि हमारी सीमा पर ह्यूण जाति के बाहरी लोग लगातार छुटपुट आक्रमण कर रहे हैं। आप सभी अवगत हैं कि ह्यूण बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और हमारी पुण्य पावन धरती को छीनना चाहते हैं। इस हेतु आप सबकी अंतःइच्छा को हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
1: हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए।
0: हमारी भी यही इच्छा है, पर आप लोग जानते हैं कि हमारी आयु अब बहुत हो चली है। ऐसी स्थिति में क्या आप सब खंड राज्य के अधिपतिगण इस सभा में उपस्थित हमारे युवराज विजय श्रवा के नेतृत्व को स्वीकार करने की सहमति देते हैं?
2: इसके पहले कि आप सब किसी निर्णय पर पहुंचे, मैं इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन युवराज विजय श्रवा के विषय में आप सबको कुछ जानकारी देना चाहता हूं।
1: अवश्य अवश्य अवश्य,
2: क्योंकि आप में से कई नरेशों ने युवराज विजय श्रवा की वीरता के बारे में नहीं सुना होगा। क्या आपकी अनुमति है?
1: अनुमति है, अनुमति है।
2: माननीय सभासदों, कुमार विजय श्रवा ने अतीत में हुए मगध और सूत प्रदेशों की लड़ाइयों में अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। उन्होंने जिस चतुराई से इन युद्धों का संचालन किया था, वैसा भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया। युद्ध में किस तरह साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाकर शत्रु को चारों खाने चित करना चाहिए, युवराज को भली भांति जानकारी है। उन्होंने यह कला किसी और से नहीं, अपने यशस्वी पिता सम्राट दुमत सेन से ही सीखी है। युवराज विजय श्रवा ने मगध के युद्ध में जिस प्रकार मोर्चेबंदी की, वह अविस्मरणीय है। विपक्षी सेना को पता चला कि युवराज विजय श्रवा की सेना घबरा गई है और पीछे हट रही है, तो वो पीछा करने में लग गई। जैसे ही युवराज ने देखा इस पीछा करने की कार्यवाही में शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई है, तो उन्होंने अपने सुनियोजित एक ही प्रबल आक्रमण से शत्रु सेना को चारों ओर से घेर लिया और बंदी बना लिया। मित्रों, हमें हूणों के साथ ऐसी ही बुद्धिमत्तापूर्ण युद्ध की नीति अपनानी होगी। मत भूलिए कि हूण अत्यंत ही बर्बर और आक्रामक जाति है, जिसका इस धरती पर प्रवेश मात्र हमारी दासता को आमंत्रण नहीं होगा, अभी तो हमारी संस्कृति का सर्वनाश होगा। अब निर्णय आपके हाथ में है।
1: हमें युवराज विजय श्रवा का ही नेतृत्व चाहिए।
0: तो अब हम यही निर्णय मानते हैं कि युवराज विजय श्रवा के नेतृत्व में समस्त खंड राज्यों की सेनाएं हूणों से युद्ध के लिए तैयार की जाएं। युवराज का क्या कहना है?
3: सभी महामहिम नरेशों का मैं अभिवादन करता हूं। आप लोगों की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं भावी युद्ध आप सब वयोवृद्धों के आशीर्वाद और आदेशों से लड़ूंगा। हमें राष्ट्र के युवकों में वीरता की ज्योति जगानी पड़ेगी। उनके भालों को लोहित टीकों द्वारा सुसज्जित कर रणभूमि में भेजना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी सेना के साहस और शौर्य को बहुगुणित करते हुए शत्रु दल को शीघ्र ही पराजित कर भारत की विजय पताका फहराऊंगा। कृपया मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सिर कटाने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।
4: कितनी अद्भुत बात है।
5: कौन सी बात?
4: जिस विजय श्रवा को हम अकर्मण्य और विलासी समझते थे, उसने तो युवाओं में उत्साह भर दिया।

0: राजमाता, आज राजकुमार जी ने राष्ट्र में नए प्राणों का संचार कर दिया।
1: अरे ये सब मेरी भावी पुत्रवधु चंद्रहासिनी के सौभाग्य का परिणाम है। मेरे पुत्र के जीवन में चंद्रहासिनी का प्रवेश जैसे ही हुआ, वो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भी समझने लगा। क्यों चंद्रहासिनी?
0: ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस योग्य मान रही हैं।
2: आपने मुझे बुलाया माँ।
1: आओ पुत्र, पुत्र हमें तुम पर गर्व है।
2: माँ, एक दिन आपको आशंका हुई थी कि कहीं मैं विलासी बनकर स्वाभिमानिनी माता का दूध कलंकित न करूं। उसी क्षण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपकी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करके रहूंगा। इसीलिए माँ, उसी समय मैंने ये भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा।
1: पुत्र?
2: हाँ माँ, ये मेरा स्पष्ट निर्णय है।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे लाल। अपनी इस वृद्धा माता की भूल को क्षमा करो। मैं जानती हूं कि मैंने अपने ही हृदय के टुकड़े को कठोर और अपराध युक्त वाकवाणों से पींद कर उसका बहुत अपमान और तिरस्कार किया था, किंतु तुम्हारी निश्चल तपस्वी मूर्ति को देखकर मेरा हृदय स्वयं अपने कहे वाकवाणों के लिए पश्चाताप कर रहा है। इसके अतिरिक्त मात्र सेवी पुत्र को जो निरर्थक कष्ट सहना पड़ा, वो भी मेरे मातृत्व के विपरीत कार्य हुआ है। इन समस्त त्रुटियों को करते हुए भी चंद्रहासिनी को मैंने पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर लिया है पुत्र, और महारानी कुमुद वल्लभा को मैंने और महाराज आदित्य सेन को सम्राट ने वचन दान भी कर डाला है। क्या मातृ पितृ सेवी पुत्र से अवज्ञा की आशा की जा सकती है? क्या सम्राट और मेरे वचनों का कोई मूल्य नहीं है मेरे पुत्र? क्या विवाह की स्वीकृति देने का अधिकार कभी भी तुमसे छीना था हमने? यदि नहीं, तो आज की राजपुत्रियों में चंद्रहासिनी ही सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी है, जो अक्षय यौवना, अनिंद्य सुंदरी, पारंगत विदुषी और विनयपूर्ण आज्ञाकारिणी है। उसका समग्र जीवन चरित्र और सौंदर्य निष्कलंक है। फिर भला ऐसी राजपुत्री को अपनी पुत्रवधू बनाने का लोभ मैं कैसे संवरण करूं? तुम ही बताओ।
2: मां, मैं अपनी ओर से जो कुछ चंद्रहासिनी को दे सकता था, भुवन मोहिनी को साक्षी बनाकर दे दिया है। इससे अधिक आज मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मैं विवाह आदि के बंधनों में जितना ही उलझूंगा, राष्ट्र रक्षा का प्रश्न उतना ही जटिल होता जाएगा। इसलिए मां, महान दायित्वों के सामने एक व्यक्ति के विवाह का मंगल कार्य तुच्छ है, चाहे साम्राज्य का उत्तराधिकारी ही क्यों ना हो। आप जानती हैं मां, अनासक्ति की तुलना में सर्वदा आसक्ति ही पराजित हुई है। फिर भी आप ये सब कह रही हैं? एक ओर मैं राष्ट्र की सेवा को तत्पर हो रहा हूं, और दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रहासिनी से विमुख भी हो रहा हूं। समग्रता में क्या उचित है, क्या अनुचित, नहीं जानता। परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि कल तक मैं शून्य जीवन व्यतीत कर रहा था, अकर्मण्यता का जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु आज तो मैं स्वयं के होने का भावार्थ समझ गया हूं। आज मेरे लिए जीवन का एक भी क्षण मूल्यहीन नहीं है। वो देश के लिए है, वो राष्ट्र के लिए है। मेरे माता पिता ने मेरी उपेक्षा की, सुनसान पहाड़ियों में, जंगलों में निरुद्देश्य भटकता रहा मैं। परंतु अब उन्हीं माता पिता के हृदय से स्नेह, सौभाग्य और आशीर्वाद की त्रिवेणी निकल रही है मेरे लिए। मुझे जो चाहिए था मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरण्यक?
3: हाँ मित्र।
2: धारा नगरी को प्रस्थान करने की तैयारी करो। और हां, किसी भृत्य को कहो कि शीघ्र जाकर भुवन मोहिनी को मेरा संदेश सुनाए कि वो भी मेरे ही साथ मेरे रथ में बैठकर मातृभूमि की यात्रा करने की शुभ आयोजना में संलग्न हो। उसके भृत्य और वैयक्तिक संपत्ति आदि जो भी हो वो अपने रथ में लेकर शीघ्र ही पर्णकुटी में आ जाए। और हां, उससे निश्चित रूप से स्मरण करा दिया जाए कि एक दिन उसके निर्वासन की घड़ी में मैंने प्रतिज्ञा ठानी थी कि उसे बुलाने के लिए मैं ही अपना रथ लेकर आऊंगा। वो बेला आज उपस्थित है।
3: जो आज्ञा युवराज, मैं अभी जाता हूं।
1: क्या सोच रही है हमारी भावी पुत्रवधू?
0: राजकुमार ने भुवन मोहिनी को बुलवाया है।
1: अच्छा,
0: अपने साथ धारा नगरी ले जाने के लिए वो तैयारी भी कर रही है।
1: कोई बात नहीं पुत्री, इसमें तुम परेशान ना हो, मैं अपने पुत्र को अच्छी तरह जानती हूँ।
0: माँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी जाऊं।
1: तुम्हारी भी इच्छा है, परंतु पुत्री हम लोग तो धारा नगरी बाद में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हमें सम्राट के साथ संपूर्ण देश की परिक्रमा करनी है। तब तक तुम अकेली प्रासाद में कैसे रुकोगी? देखो पुत्री, कुछ दिन और धैर्य रखो, उसके बाद शीघ्र ही तुम हमारी पुत्रवधू बनकर राज प्रासाद की स्वामिनी बनोगी। फिर भी यदि हमारे युवराज तुम्हें अतिथि के रूप में अपने साथ ले जा सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य ले लेना।
0: धन्यवाद माँ। मेरी माता ने भी मुझे आज्ञा दे दी, परंतु अब मुझे फिर से भुवन मोहिनी की शरण जाना पड़ेगा। ये जानती हुई भी कि वो मेरे प्रिय के अंतर मन में देवी की भांति स्थापित है। ठीक है, जाती हूँ भुवन मोहिनी के पास।
4: अरे राजकुमारी जी, आइए, बस मेरा सामान रथ पर रखा ही जा चुका है। राजकुमारी, मेरे गले लगिए, मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगी आपके पिता महाराज की, उन्होंने मुझे आश्रय दिया था। अरे आप अनमनी मत होइए, मैं जब तक आपको राजकुमार के हृदय का हार नहीं बनवा दूंगी शांत ना होंगी। राजकुमार आपको अवश्य स्वीकार करेंगे।
0: सखी, हृदय में जिस प्रेमाग्नि की लपटें धधक उठी हैं, वे क्षणिक वियोग की अश्रुधाराओं से बुझने ना पाए, बस यही तुमसे प्रार्थना है। न जाने क्यों आज ऐसा लगता है कि राजकुमार के ओझल होते ही मेरे जीवन की समग्र प्रसन्नता लुट जाने वाली है। मेरे नेत्र आंसुओं को नहीं संभाल सकते, मैं असहाय अपने जीवन को बचा न सकूंगी। बताओ बताओ सखी, मैं क्या करूं जिससे वो मेरी दृष्टि से ओझल ना हो?
4: राजकुमारी जी, संयोग वियोग मानव जीवन का अटल धर्म है, इसे सहन करना ही पड़ेगा, चाहे हंसकर सहन करो या रोकर। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय और संयोग वियोग का सम्मिश्रण ही तो मानव जीवन का लेखा जोखा है।
0: सखी, मैं मानव जीवन की परिभाषा नहीं जानती, न यही जान सकी हूँ कि मानव जीवन की उपयोगिता क्या है और ये जीवन में क्यों प्राप्त हुआ।
4: किंतु इसे तो जानना पड़ेगा राजकुमारी।
0: अवश्य प्रयास करूंगी, किंतु मात्र राजकुमार विजय स्रवा के माध्यम से। अकेले न मैं कुछ कर सकती हूँ न समझ सकती हूँ, विजय स्रवा के बिना मैं उस सरिता का शून्य अंक या गर्व ही बनी रहूंगी जिसका गंभीर और जीवनप्रद सरस रस पूर्णत्व की स्थिति के पूर्व ही सूख चुका है और जो शून्य से अधिक कुछ भी नहीं।
4: राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ धारा नगरी चल सकेंगी? युवराज से मैं आज्ञा ले लूंगी इसके लिए, निश्चिंत रहिए।
0: धन्यवाद सखी, तो मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ।
4: हाँ हाँ।

0: सारथी, राजकुमार के वापस लौटने की सूचना पाकर न जाने कितनी भीड़ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची है। भुवन मोहिनी भी कब की आ चुकी है, परंतु उन्हें अवकाश ही नहीं मिल रहा है।
1: अरे भुवन मोहिनी नहीं, राजकुमारी भी आई है।
0: क्या कहते हो?
1: मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा।
0: नहीं, मैं भी जाकर युवराज को बताता हूँ।
1: हाँ हाँ जाओ।
0: मित्र मित्र मित्र,
2: क्या है अरण्यक?
0: देव, भुवन मोहिनी पर्ण कुटी में आ चुकी है, किंतु उनके साथ साथ राजकुमारी चंद्रहासिनी भी पधारी हैं।
2: अरे तो ऐसा करो कि तुम उन दोनों की सेवा में प्रस्तुत रहो, और जैसे ही अवकाश मिलेगा मैं उन लोगों के बीच आ जाऊंगा और हम सब एक साथ भोजन करेंगे।
0: बहुत अच्छा मित्र, अभी जाता हूँ।
2: बस बस, देखिए अब अधिक समय मैं नहीं दे पाऊंगा, यात्रा में विलंब होगा। आप सब जोश बनाए रखिए और आगामी युद्ध की तैयारी करिए।
3: युवराज विजय शर्मा की
4: जय!
3: युवराज विजय शर्मा की
4: जय!
3: युवराज विजय शर्मा की
4: जय!
2: भुवन मोहिनी, आज की घड़ी कितनी शुभ है। आज हमारे स्वतंत्र पुनर्मिलन का अति मूल्यवान क्षण उपस्थित हुआ है, और संयोग से उसमें भाग लेने के लिए राजकुमारी चंद्रहासिनी भी उपस्थित हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें पुरस्कृत करूं।
5: देव चिरायु हूं, मेरे समस्त सुख वैभव के क्षण तभी उपस्थित हो जाते हैं जब देव के पावन दर्शन में मुझ जैसी नारी के तुच्छ जीवन क्षण व्यतीत होते हैं। फिर भी देव के श्रीमुख से पुरस्कृत किए जाने का विशेष आदर पाकर मैं कृतार्थ हूँ।
2: आज तो राजकुमारी का नाम सार्थक ज्ञात होता है।
6: हाय, बलिहारी जाओ राजकुमार, कम से कम इतना तो कहा।
2: ओ रूप की जादूकरनी, अनमोल मोल का सौदा करके तुमने मुझे प्रेम की एकांत साधना से विचलित कर दिया है। मेरी पलकों में नाचकर तुमने अंतर के प्रेम रहस्य को पहचान लिया है। तुम बरजोरी से वहां प्रवेश कर चुकी हो जहां भुवन मोहिनी चिरकाल से प्रतिष्ठित रहती आई है। तुमने एक अपराजिता सौंदर्यमयी नारी को भी अपने मायावी रूप के बंधन में जकड़कर उसके रूपोन्मोहन से स्खलित कर दिया है। तुम्हारे ये विशाल नेत्र अपने पलकों में रूप की मदिरा उड़ेल कर मुझे मद विह्वल करते जा रहे हैं। मैं इनका जितना ही चक्षुपान करता हूं मेरी प्यास उतनी ही बढ़ती जा रही है।
5: देव, मेरा पुरस्कार मुझे मिलेगा?
2: हाँ हाँ, तुम मांगो तो।
5: एक बार आप और सोच लें, मैं जो कुछ मांगूंगी वो आपको देना ही होगा।
2: बस वो वस्तु मेरे प्राण से अधिक मूल्यवान न हो। मैं अगणित भुवन मोहनियों और चंद्रहासिनियों को अकेला प्यार करूंगा। चिर अद्वैत आज द्वैत की भावना से मूर्तिमान है, प्रेम वासना का प्रतिनिधि है।
5: मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। आज अनंग का रंग तपस्वी विजय

0: भविष्य में विजयश्रवा तुमसे दूर होता दिखाई पड़े तो उस स्थिति में संपूर्ण दोष का दायित्व तुम्हारा होगा। जानती हो ना, मानव जीवन पतन का भी इतिहास रहा है।
1: राजकुमारी, मैंने अपनी प्रियतम सौगात आपको अर्पित कर दी है। हो सके तो इस सागर से बिंदु मात्र मुझे प्रदान कर अपनी उदारता का परिचय देना, किंतु वो कभी

0: सुख शांति और समृद्धि के स्वर्ग में प्रतिष्ठित किया है। देव स्वयं साक्षी हैं। तुम अपने महान दैवी संपत्ति द्वारा अपने जीवन को सजाकर एक अशुभ नारी से अब देवी बन चुकी हो। मैं तो शक्ति, अहंकार, अहम्मन्यता और सत्ता की गोद में पलकर साधारण मानवी हूं, भले ही मेरा वह स्वरूप महानता का परिचायक हो।
1: मेरी बहन,
2: ये नारी जिसने अपना अंतर और वाह मेरे लिए बिखेर रखा है, मैं उसे कब से समेटकर अपने आप में छिपा लेना चाहता रहा हूं, किंतु मैं उसका बिखरना रोक नहीं पाता, मैं उसे अपने आप में समेट नहीं पाता।
1: देखा राजकुमार, मेरी छोटी बहन की महानता को, स्वयं इतनी विशाल हृदय होकर मेरा गुणगान करने चली है।
2: भुवन मोहिनी, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं सका। जब भी मैं अपनी समझ की परिधि में तुम्हें घेर लेता हूं, तभी मुझे ज्ञात होता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व का ना जाने कितना भाग अभी भी मैं स्पर्श नहीं कर सका। समझ की परिधि के भीतर लाना तो दूर की बात है।
1: ये भी देव की ही कला है। मुझे आदर देकर वो राजकुमारी को ही प्यार जता रहे हैं। अच्छा, अब देव का आदेश हो तो अरण्यक सबको भोजन कराएं।
2: अवश्य प्रिय, भोजनादि करके सब लोग शीघ्र ही सो जाएं और कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में धारा नगरी को निकल पड़ें।

0: संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 7वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश भर में कल अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे की लत से बचाना, पुनर्वास में मदद करना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। प्रदेश भर में 30 जून तक जलगंगा वर्धन अभियान चलाया जा रहा है। 19 मार्च से शुरू हुए इस अभियान के दौरान लगभग 10,514 करोड़ रुपए की लागत से 3.62 लाख से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया जा चुका है। वेनेजुएला में आज 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी काराकास और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख जताया है। प्रदेश में मानसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए में आज भारत बांग्लादेश के बीच मुकाबला मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। दोपहर का 1 बजा है। अब सुनेंगे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत करती हूँ मैं शिखा साहू, स्वीकारे बहुत सारे स्नेह के साथ मेरा नमस्कार। सखियों, कहते हैं ना कि खुशी अगर किसी दुकान में मिलती तो इस दुनिया में कोई दुखी नहीं होता, लेकिन खुशी तो आपके अंदर होती है मेरी सखियों। इसलिए आपकी ये दोस्त शिखा आपसे कहती है कि खुशी को महसूस कीजिए, वो सब कीजिए जिससे आप खुश रह सकती हैं। अच्छा पढ़िए, अच्छा लिखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छा सोचिए और हाँ, म्यूजिक जरूर सुनिए। और ये सब आपको मिलेगा हमारे आधे घंटे के इस सफर में जिसे हम महिला सभा कहते हैं। सखियों, यहाँ मेल मुलाकात, बातें बातें, खाना गाना और सजना संवरना सब कुछ होता है। तो बिना भूले हर मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार 1 बजे मिलने आ ही जाया कीजिए, हम यही मिलेंगे। चलिए सखियों, अब बातें करते हैं योग की। मैं मानती हूं कि बीते दिनों योग की खूब बातें की, खूब योग किया और योग के फायदों के बारे में सुना और समझा। भाई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो था, सखियों 21 जून आता है, हम योग दिवस मनाते हैं, पर बाद में क्या, कितने लोग इसे साल भर तक जारी रखते हैं। अब बताइए सखियों, क्या हो अगर सूरज एक ही दिन चमके या नदियां केवल एक दिन बहे, क्या सांसें केवल एक दिन चलती है? नहीं ना। तो फिर योग जो हमारी सांसों, हमारे मन और हमारे अस्तित्व को जोड़ता है, हमारा व्यक्तित्व निखारता है, तो उसके लिए क्या सिर्फ एक दिन काफी होगा? सखियों, कहीं पढ़ा है कि योग वह विराम है जो जीवन के कोलाहल के बीच शांति का संगीत रचता है, जो मन के अंधेरे कोनों में उजाला भर देता है। वैसे भी कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और योग इसी मन को जीतने की साधना है। जब मन शांत होना तो छोटी छोटी खुशियां भी जीवन का उत्सव बन जाती है। तो मेरी प्यारी सखियों, योग दिवस मनाना अच्छी बात है, लेकिन योगमय जीवन जीना उससे भी बड़ी बात है। हम सखियां आपस में एक दूसरे की हितैषी है, तो इस विषय पर हम आपको समय समय पर बात करते रहेंगे और योग करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और खुद भी इस बहाने प्रेरित हो जाएंगे। अब बात हम मैंने छोटी छोटी खुशियों की है सखियों, तो इन दिनों बारिश कि जो नन्ही नन्ही फुहारे है ना, वो जीवन में सुकून और ठंडक घोल रही है। देर से ही सही, अब बादलों की रुखाई दूर हुई है और उसने बूंदों के रूप में हम पर, हमारी तपती धरा पर अपना स्नेह लुटाया है। तो आइए आज कार्यक्रम की शुरुआत में बारिश की रिमझिम और रुमझिम का जश्न मनाते हैं 1942 लव स्टोरी के इस गीत के साथ।

0: सखियों, हम सभी के भीतर किसी विशेष किस्म की कला या हुनर छुपा होता है जिसे हम अपनी मेहनत और अनुभव से दुनिया के सामने लाकर अपनी पहचान बना सकते हैं। और ये कला, ये हुनर हमारी आमदनी का जरिया भी बन सकता है। इसी सोच को आधार देती है मेरी सखियों भारत सरकार की एक पहल, स्टेप STEP, यानी सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेंस। सखियों, स्टेप पहल के उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार देने वाले कौशलों का प्रशिक्षण देना, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। सखियों, इस योजना के अंतर्गत वे प्रशिक्षण लेकर आय और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ा पाती हैं। आपको बता दें सखियों कि इस योजना का लाभ 16 वर्ष या उससे अधिक की महिलाएं ले सकती हैं। इस योजना में नामांकन भरने के बाद भी अपनी पसंद के क्षेत्र में प्रशिक्षण ले सकती हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जी हाँ सखियों, इसके अंतर्गत कृषि और बागवानी, डेयरी, पशुपालन, हस्तशिल्प, हथकरघा, सिलाई कढ़ाई और जरीकारी, पर्यटन, कंप्यूटर और आईटी सेवाओं जैसे विषयों के भी आप प्रशिक्षण ले सकती हैं। तो भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्टेप पहल के साथ अपनी सफलता के कुछ स्टेप्स बढ़ा लीजिए सखियों। आज सखियों कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत, बारिश वाले। तो अभी ये गीत सुनते हैं, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
1: देखो जरा, देखो

0: सखियो, ये दिल लगी फिल्म का ये गाना लता जी और कुमार सानू की आवाज़ में अभी हमने सुना। इसमें संगीत था दिलीप सेन और समीर सेन का। अब सखियो कार्यक्रम में हमसे जुड़ रही हैं पूजा चौरसिया जी। हम सुनेंगे इनकी वार्ता जिसमें ये बता रही हैं कि लोक परंपराओं को सहेजने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो आइए सुनते हैं पूजा चौरसिया जी को।
1: नमस्कार साथियों, आज मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर मिला है जो हमारे अस्तित्व, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति की आत्मा से जुड़ा है। विषय है भारतीय लोक परंपराओं को सहेजने में महिलाओं का योगदान। भारतीय लोक परंपराओं से तात्पर्य उन मूल्यों, सांस्कृतिक प्रथाओं, रीति रिवाजों, पर्व त्योहार, लोक कला, लोकगीत और लोक नृत्य से है जो भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है। भारतीय लोक परंपराएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास, सामाजिक मूल्यों, जीवन दर्शन और सामुदायिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। जैसे एक छोटा बालक माँ की गोद में खेलते हुए पलता है और आकार लेता है, उसी तरह कला का यह छोटा रूप लोक कला और परंपरा भी स्त्री की गोद में ही आश्रय पाकर अपना विकास करती है। किसी ने कहा भी है कि एक पुरुष को शिक्षित और सुसंस्कृत करोगे तो केवल एक व्यक्ति ही सुधरेगा, लेकिन यदि एक महिला को शिक्षित, सुसंस्कृत और सशक्त करोगे तो पूरा परिवार और आगे आने वाली कई पीढ़ियां सवर जाएंगी। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे सामने गगनचुंबी मंदिर, प्राचीन ग्रंथ और बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के नाम आते हैं, लेकिन क्या हमने ये कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी इस संस्कृति को हर घर की रसोई तक, हर बच्चे की जुबान तक और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक किसने पहुंचाया? वो काम किसी राजा की तलवार ने नहीं, बल्कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने किया। जहां पुरुषों ने घर से बाहर रहकर बाहरी व्यवस्था और आर्थिक मोर्चा को संभाला, तो वही महिलाओं ने घर की पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृतियों को, परंपराओं को हस्तांतरित कर जीवित रखा। अतः महिलाओं को हमारी संस्कृति का मुख्य संरक्षक कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले लगभग सभी पर्व त्योहारों को बनाए रखने में महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। एक बच्चा दुनिया में आकर पहला अक्षर अपनी मातृभाषा में अपनी माँ से सीखता है। दादी नानी द्वारा सुनाई गई पंचतंत्र की कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं थी, बल्कि उन कहानियों ने हमारे भीतर नैतिकता और भारतीय संस्कृति के बीज बोए। लोक परंपराओं के क्रम में बात अगर लोकगीतों की करें तो प्रत्येक शुभ अवसर पर, विवाह

0: स्थानों पर फसल कटाई, यहाँ तक कि मृत्यु संस्कार तक में लोकगीत हमारी माताओं बहनों द्वारा गाए जाते हैं। फाग गायन, सोहरे, आल्हा गायन, बन्ना बन्नी गीत, सुआ, ददरिया आदि लोकगीतों के कुछ उदाहरण हैं। इसके साथ भारत के प्रत्येक क्षेत्र में लोक नृत्य भी अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। गरबा, घूमर, लावणी, कालबेलिया, राई नृत्य, मटकी नृत्य, बिहू नृत्य आदि लोक नृत्यों को महिलाएं ही नई पीढ़ी को सिखाकर इनका संरक्षण करती हैं। इसी संदर्भ में बात यदि लोक चित्रकलाओं की करें तो रंगोली चित्रकला, मधुबनी, वर्ली चित्रकला, मालवा की संजा, मांडना, कलमकारी आदि केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय लोक जीवन की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जो विशेष अवसरों पर हमारे घर की महिलाएं ही बनाती हैं। ये कलाएं किसी संस्थान से नहीं बल्कि एक बेटी अपनी माँ, दादी, नानी व परिवार की अन्य महिलाओं से ही सीखती है। खानपान की बात करें तो भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपने विशेष खानपान के लिए जाना जाता है। यह स्वाद का इतिहास भी महिलाओं के कारण ही जिंदा है। महिलाएं ही हैं जिन्होंने आज भी त्योहारों और विशेष अवसरों पर पारंपरिक पकवान बनाकर हमारी पाक कला को बचाए रखा। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, गणगौर पर्व जैसे पर्व त्योहारों में बारीक पद्धतियां होती हैं जिनकी असली मार्गदर्शक महिलाएं ही होती हैं। साथ ही करवा चौथ, तीज व्रत, छठ पूजा जैसे कठिन व्रतों के नियम पालन करना, त्योहारी पर विशेष सामग्री व पकवान तैयार करना, व्रत के पीछे की कहानियां, उनकी पवित्रता को अक्षुण्य रखने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं पर ही देखी जाती है। पुरुष अक्सर इसमें सहयोगी की भूमिका में होते हैं। दादी नानी के नुस्खे किसने नहीं सुने, सर्दी खांसी में अदरक तुलसी का सेवन हो, हल्की चोट में हल्दी का लेप, पेट दर्द में अजवाइन काला नमक, महावारी के समय विशेष काढ़ा और साथ साथ त्वचा की देखभाल हेतु बेसन हल्दी व उपटन, अर्थात घरेलू उपचार तो जैसे माँ की रसोई से ही शुरू होते हैं और ये छोटे छोटे नुस्खे आज भी बड़ी बड़ी महंगी दवाइयों को मात देते हैं। केवल यही नहीं, जनजाति समुदाय की महिलाओं ने भी अपनी विशेष कला तथा प्रकृति के संरक्षण में अपनी भूमिका निस्वार्थ भाव से निभाई है, जिसके कुछ उदाहरण हैं मध्य प्रदेश की भीली गुड़िया की संरक्षणकर्ता बत्तोबाई, पिथौरा कला की मशहूर कलाकारा भूरीबाई, पंडवानी गीत गायिका तीजनबाई तथा गोंड चित्रकला हेतु मशहूर दुर्गाबाई व्याम आदि। लेकिन विडंबना यह है कि वर्तमान में युग बदल रहा है। आजकल इन पर्व त्योहारों को केवल खाना पूर्ति समझा जाने लगा है। रील्स की दुनिया, यूट्यूब में खोई हमारी नई युवा पीढ़ी पुराने रीति रिवाजों को जैसे एक बोझ और वक्त की बर्बादी समझने लगी है। आज कोई पर्व त्योहार केवल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया पर दिखाने तक ही सीमित रहकर अपनी असली पहचान खोते जा रहे हैं। रेडी टू ईट और फास्ट फूड की इस पद्धति ने शांति और सब्र से परिवार के साथ मिलकर बनाई जाने वाली पारंपरिक चीजों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। आज हमें अपनी लोक परंपरा को समझने, सहेजने और संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है ताकि हमारी ये वर्षों की खूबसूरत परंपराएं कहीं खो ना जाएं। शहरीकरण, पश्चिमी संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, पारंपरिक लोक कलाओं के लिए सीमित आर्थिक अवसर तथा युवा पीढ़ी की घटती रुचि आदि इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। लोक कला और परंपराओं को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ा जाए, स्वसहायता समूहों, सामुदायिक संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम चलाकर इनको प्रोत्साहित किया जाए। इससे महिलाओं के प्रयासों को नई ऊर्जा मिलेगी और लोक कलाओं का संरक्षण भी संभव होगा। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि यदि भारत आज पश्चिमी संस्कृति की आंधी में भी अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ सीना ताने खड़ा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी नारी शक्ति है। वे केवल इतिहास के पन्नों में ही नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान के हर संस्कार में जीवित हैं। आइए, आज इस मंच से हम उन सभी महिलाओं का आभार व्यक्त करें और उन्हें नमन करें जो हमारी इस महान संस्कृति की असली रक्षक हैं। धन्यवाद।
1: सखियों, ये थी पूजा चौरसिया जी, और अभी हमने सुनी इनकी वार्ता, लोक परंपराओं को सहेजने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। वैसे महिलाओं की भूमिकाओं की बात करें ना सखियों, तो महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त भूमिका निभाती है। बस उनसे ना उनके खुद के ख्याल रखने के बारे में मत कहिए। सबका ध्यान रखना, सबके समय के हिसाब से चलना, सब करना, बस अपनी बारी आई तो हंसकर टाल जाना। अरे मुझे क्या हुआ है, एक गोली खाऊंगी और फिर तैयार। क्या ये सही है सखियो? जरा सरदर्द हुआ, बदन दर्द या थकान महसूस हुई तो हम तुरंत दर्द निवारक गोली की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं, जो कतई सही नहीं है मेरी सखियो। किसी भी किस्म का दर्द हमारे शरीर द्वारा दिया गया सिग्नल होता है, और ये होती है एक चेतावनी जो यह बताती है कि अंदर कुछ असामान्य है। पर हम उस सिग्नल को समझने की बजाय एक दर्द निवारक गोली खाकर लग जाते हैं अपने काम पर। पर सखियो, हर दर्द का इलाज दर्द निवारक गोली नहीं है, और यही है आज के हमारे क्रम फैमिली फिटनेस का विषय। सखियो, दर्द निवारक दवाइयों के बारे में मेडिकल साइंस कहता है कि इनका अत्यधिक और अनियंत्रित सेवन शरीर पर कई दुष्प्रभाव डालता है। इससे पेट में अल्सर, किडनी और लीवर की परेशानियां तक हो जाती हैं। कई बार लगातार लेने वाली इन गोलियों का शरीर आदी हो जाता है, और फिर वो दवा आपने खुद ने महसूस किया होगा कि धीरे धीरे असर कम करने लगती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि हमें इन दर्द निवारक गोलियों का भी कोई असर नहीं पड़ता। सखियो, हमारा शरीर समय समय पर हमें आत्म सुनवाई का संदेश देता है, तो अपने शरीर की भाषा को समझें। दर्द को दबाने की नहीं, उसे समझने की, उसके कारण को जानने की कोशिश कीजिए। अच्छा स्वास्थ्य वो उपहार है सखियो, जो किसी भी कीमती चीज़ या संपत्ति से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। तो अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले, और हमारी सेहत अच्छी रहे और ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल के खर्चों से आप परेशान न हो, इसलिए हेल्थ बीमा पॉलिसी ज़रूर ले। पर उन्हें लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगी इस गाने के बाद। तो सुनते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत, लिया है हमने फिल्म बेताब से। लता जी और शब्बीर कुमार की आवाज़ें,

सखियो, गीत से पहले हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे कि, और अच्छे स्वास्थ्य की चाह है ना सभी को होती है, पर उन अनिश्चितताओं का क्या जो अचानक बिना दस्तक दिए आ जाती हैं। कोई छोटी सी बीमारी, अचानक आया अस्पताल का बिल, हमारी वर्षों की जमा पूंजी खर्च हो सकती है। ऐसी ही अनिश्चितताओं के लिए समझदारी भरा कदम होता है स्वास्थ्य बीमा। लेकिन क्या हर स्वास्थ्य बीमा योजना हमारी ज़रूरतों के हिसाब से होती है? उनकी वो छिपी हुई शर्तें कहीं हमारे बुरे वक्त को और भी बुरा तो नहीं बना देगी? इसलिए हेल्थ पॉलिसी लेते वक्त मेरी सखियों ये सवाल ज़रूर पूछें। पहला, क्या ये पॉलिसी हॉस्पिटल में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं को कवर करती है या फिर गंभीर बीमारियों का कवरेज इसमें उपलब्ध होगा या नहीं? नो क्लेम बोनस की शर्तें क्या है? क्या पॉलिसी हमें हॉस्पिटल में प्राइवेट या सेमी प्राइवेट रूम का खर्च कवर करेगी? बीमा कंपनी के नेटवर्क में कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं और पूर्व मौजूदा बीमारियों पर प्रतीक्षा अवधि कितनी है? इन सवालों के अलावा सखियों, पूरे नियम, दस्तावेज और शर्तें भी ध्यान से पढ़कर समझकर ही पॉलिसी लीजिए। अगर इन बातों की तस्दीक कर पॉलिसी लेंगी ना, तो बिना चिंता के केवल पेशेंट के स्वास्थ्य सुधार पर मन लगा पाएंगी। तो सखियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दूं कि कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार। तो अब इजाजत दीजिए अपनी सखी शिखा को। स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

सखियां सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

मध्य प्रदेश है। लीजिए अब लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजा राम विश्वकर्मा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत, और ये कार्यक्रम है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। तो लीजिए आपको सुनवाते हैं पहला लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजा राम विश्वकर्मा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत का, जहां आप सुनेंगे नंद कुमार जैन द्वारा गाए भजन और गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नंद कुमार जैन द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ। वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
5: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद इरफान की आवाज़ में फिल्म विलन से।

मिथुन का संगीत उन्हीं के लिखे बोल मोहम्मद इरफान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म विलन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है नंदिनी श्रीकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है क्वीन।

0: अमित त्रिवेदी का संगीत अन्विता दत्त के लिखे बोल नन्नी श्रीकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म क्वीन से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि ये दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति सदैव समर्पित रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे काले दौर में से एक यानी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में कल एक निर्माणाधीन गोदाम का हिस्सा अचानक ढह गया था जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 33.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 203.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को समय पर आर्थिक संबल प्रदान करना है। श्री यादव ने कहा कि सरकार की इस पारदर्शी डिजिटल हस्तांतरण प्रक्रिया से हितग्राहियों को बिना किसी परेशानी के राशि मिल रही है जिससे उनके जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 24 घंटों में सीधी और दतिया में सर्वाधिक 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया जबकि पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री रहा। छिंदवाड़ा के चांद में 75.2 मिलीमीटर भारी बारिश हुई है। वहीं जबलपुर में 56 और सीहोर में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चली। मौसम विभाग ने सीहोर और जबलपुर में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झंझावात और वज्रपात बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है जबकि सीधी जिले में कुछ स्थानों पर लू का भी प्रभाव रह सकता है। आपको समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में संचालित शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स और छात्रावासों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में साइबर अपराधों से बचाव को लेकर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व में एक माह के भीतर 8 बाघों की मौत के मामले को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। आगर मालवा में कल आयोजित हुए कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक ने एक साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगा। धार जिले में खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण किया। डिंडौरी जिले में वर्ष 2026 के खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा और सूखे जैसी स्थितियों की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को समय रहते आवश्यक कृषि उपाय अपनाने की सलाह दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ीं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
8: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
9: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हम

आपके भेजे पत्रों को पढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद के गीत। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला गीत हम कौन सा सुनने वाले हैं और उसके लिए जो हमें फरमाइश मिली है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो उदित नारायण की आवाज़ में, साथ ही कविता कृष्णमूर्ति, हम गीत सुनेंगे फिल्म हद कर दी आपने से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिक पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम देवाल से शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराडे, ग्राम छेंगा और देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वन्ना वाघे, भूपेंद्र वाघे, जवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे की तरफ से। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।

फिल्म हद कर दी आपने से गीत सुना आपने उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, जिसे संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, और इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजभिये का, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन का, पटेल नगर मरनोट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया का, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबेहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से यह अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

आरडी बर्मन का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। कार्यक्रम में अब सुनते हैं अगला गीत जो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इसे हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है गयाजीपुर मंडला से वीरेंद्र कुमार पंजाबी और राधेश्याम चावला की ओर से। इसके अलावा यादव मोहल्ला सनावन मध्य प्रदेश से लिखा है दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जीतेंद्र धर्मेंद्र मालाकार की तरफ से। प्रियंका पंचौलिया, संजय पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया ने हमें लिखा है घंटाघर चौक खंडवा से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये गीत फिल्म कन्यादान से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

शंकर जयकिशन का संगीत, नीरज के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म कन्यादान से। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आपकी फरमाइश का, और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है अगले गीत को सुनने का, जो हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की तरफ से। गोला बाजार बक्सर से हमें लिखा है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ से, जो है पंजाब में, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है अगला गीत फिल्म पाकीज़ा से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

गुलाम मोहम्मद का संगीत कैफ़े आज़मी के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप गीत सुन रहे थे फिल्म पाकीज़ा से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और आपकी फरमाइश पर ही अगला गीत आपको सुनवाएंगे कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ताल और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की ओर से। कवर कॉलोनी बड़वाह से हमें लिखा है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म ताल से।

0: ए आर रहमान का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म ताल से, और इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारा पता नोट कर लें ताकि आप अपने पत्र भेजते रहें। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश, पिन कोड है 462002। नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान दिवस संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि यह दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 33.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सौगात दी है। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 203.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक जमा किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निशकजन के लिए आग, हीट वेव और आकाशीय बिजली से बचाव के संबंध में ब्रेल लिपि में प्रकाशित पुस्तक का आज लोकार्पण किया। और राज्य में मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुने युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। शाम 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य मैनचेस्टर में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा आज शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए, ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना?
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान?

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तनुषा।
1: साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राज। दोस्तों, आज 25 जून है, तो आज 25 जून को जो है क्रिकेट के लिए खास दिन है, जिसकी हिस्ट्री हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। उसी के साथ आज गुरुवार भी है, तो आप सभी को पता है कि गुरुवार के दिन हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं गीतों भरी कहानी, जिसमें प्रेम होता है, दोस्ती होती है और प्यारे प्यारे गीत भी होते हैं।
0: हम इन सब पे बात करेंगे राज, पर आज हम हमारे जीके के क्वेश्चंस तो पूछ लें हमारे दोस्तों से।
1: तो साथियों, आज का हमारा पहला सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
0: और हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं?
1: साथियों, हम एक बार पुनः दोहरा देते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
0: और दूसरा सवाल है कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप इन सवालों के जवाब सोचिए, तब तक सुनते हैं गीत का पहला गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, भारतीय खेल इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाती हैं। ऐसी एक तारीख है आज, यानी 25 जून। ये वो दिन है जिसने भारतीय क्रिकेट को दुनिया के सामने नई पहचान दी। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि 25 जून और भारतीय क्रिकेट के गौरव के विषय पर।
4: बिल्कुल दोस्तों, और आपको जान के गर्व होगा कि आज से कई दशक पहले 25 जून 1983 को लंदन के प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
3: उस समय भारतीय टीम को विश्व क्रिकेट की बड़ी ताकत नहीं माना जाता था, लेकिन कप्तान कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने क्रिकेट के सबसे मजबूत टीम माने जाने वाली वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार क्रिकेट विश्व कप अपने नाम कर लिया।
4: भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए थे। लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों और खिलाड़ियों के जज्बे ने असंभव को संभव बना दिया।
3: वेस्टइंडीज की पूरी टीम केवल 140 रन पर सिमट गई और भारत 43 रन से मैच जीत गया। जैसे ही अंतिम विकेट गिरा, पूरा भारत खुशी से झूम उठा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी साथियों, बल्कि भारतीय क्रिकेट के नए युग की एक शुरुआत थी।
4: बिल्कुल सही कहा तुमने राज, और 1983 की जीत ने भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों की सोच ही बदल दी। छोटे छोटे कस्बों और गांव के बच्चों ने भी क्रिकेटर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था।
3: बिल्कुल ठीक, इस जीत ने देश को ऐसे सितारे दिए साथियों जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। आगे चलकर सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कांबले, एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी और एक हम सभी के लिए ऐसा मुकाम भी तैयार किया कि हम जो छोटे बच्चे हैं या फिर युवा हैं, हम भी आगे चलकर क्रिकेट में अपना एक करियर बना सकें।
4: बिल्कुल सही राज, और आज भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट शक्तियों में से गिनी जाती है, और इसकी नींव कहीं ना कहीं 25 जून 1983 के उस ऐतिहासिक जीत में ही दिखाई दी थी।
3: बिल्कुल ठीक, 25 जून हमें यह याद दिलाता है साथियों कि मेहनत, आत्मविश्वास और टीम भावना से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
4: बिल्कुल, और दोस्तों 25 जून हमें यह भी सिखाता है कि अगर आत्मविश्वास मजबूत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। कपिल देव और उनकी टीम से ही सीखी है कि दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि सपने देखने वालों की ही जीत होती है।
3: इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में बड़े सपने देखिए, मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। तो साथियों, अब ये गीत जो हम सुनने वाले हैं, ये पूरा गीत हम हमारे बिल्कुल क्रिकेट खिलाड़ियों को ही डेडिकेट करना चाहते हैं। तो आइए एंजॉय करते हैं और जीत का भी जश्न मनाते हैं।

0: दोस्तों, युववाणी के खास सेगमेंट गीतों भरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको आपके स्कूल के दिनों और बारिश की बूंदों और सच्ची दोस्ती की याद दिला देगी।
1: तो कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा की, जहां दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों 12वीं कक्षा के छात्र थे। बचपन से लेकर स्कूल की आखिरी सीढ़ी तक दोनों की दोस्ती पूरे गाँव में मिसाल मानी जाती थी।
0: बरसात का मौसम था और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। कच्ची गलियां भीग चुकी थी, खेतों में हरियाली लौट आई थी और गांव के बाहर बहने वाली छोटी नदी फिर से लबालब भरने लगी थी।
1: हर सुबह अर्जुन और विक्रम एक ही साइकिल पर स्कूल जाते थे। कभी अर्जुन पैडल मारता तो कभी विक्रम। रास्ते भर दोनों सपनों की बातें करते थे और बोलते थे, मैं इंजीनियर बनूंगा,
0: अर्जुन कहता, और मैं शिक्षक, ताकि गाँव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। विक्रम मुस्कुराते हुए जवाब देता, दोस्ती इतनी गहरी थी कि परेशानी एक दूसरे की परेशानी बन जाती थी।
1: एक दिन स्कूल से लौटते समय अचानक तेज बारिश हो गई। दोनों पास के पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए।
0: विक्रम बोला, यार सोचता हूँ 12वीं के बाद पता नहीं हम साथ रह पाएंगे या फिर नहीं।
1: अर्जुन हंसकर बोला, अरे बुद्धू, दोस्ती दूरी से थोड़ी खत्म हो जाती है।

0: समय बीतता चला गया। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आने लगी। दोनों दिन रात पढ़ाई में जुट गए।
1: लेकिन तभी विक्रम के परिवार पर मुसीबत आ गई। लगातार बारिश के कारण उनकी फसल खराब हो गई, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई।
0: एक शाम विक्रम उदास बैठा था।
1: अर्जुन ने पूछा, क्या बात है?
0: विक्रम बोला, शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी यार। पापा की तबीयत खराब रहती है और उनकी मुझे मदद भी करना पड़ेगी।
1: ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन उसने अपने माता पिता से बात की, फिर स्कूल की शिक्षकों और गांव के सरपंच से भी मदद मांगी।
0: गांव के लोगों ने मिलकर विक्रम की फीस और किताबों का इंतजाम कर दिया। जब विक्रम को ये बात पता चली तो उसकी आंखें भर आई थी।
1: यार, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया?
0: अर्जुन मुस्कुराया। दोस्त, दोस्ती में हिसाब नहीं मांगा जाता।
1: अब दोनों और मेहनत से पढ़ाई करने लगे। फिर आया बोर्ड परीक्षा का आखिरी दिन। पेपर खत्म होने के बाद दोनों स्कूल के मैदान में खड़े थे।
0: आसमान में काले बादल छा रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। सारे छात्र भाग कर छत के नीचे चले गए, लेकिन अर्जुन और विक्रम वही मैदान में खड़े रहे।
1: उन्हें याद आ रहा था बचपन का पहला स्कूल बैग, पहली बारिश, पहली साइकिल और दोस्ती के अनगिनत पल।
0: विक्रम बोला, यार ये बारिश हमेशा याद रहेगी।
1: अर्जुन ने कहा, हाँ, क्योंकि इसमें हमारी पूरी स्कूल लाइफ भीग रही है। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े।

0: कुछ महीने बाद परीक्षा परिणाम आ गए और अर्जुन और विक्रम दोनों ने पूरे जिले में शानदार अंक हासिल किए।
1: अर्जुन को इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया और विक्रम को भोपाल के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में।
0: अब पहली बार दोनों अलग अलग शहरों में जाने वाले थे। गांव के बस स्टैंड पर विदाई का दिन आया। आसमान पर फिर बादलों ने घेर रखा था। बस आने से पहले हल्की बारिश वापस शुरू हो गई।
1: विक्रम ने कहा, देख बारिश भी हमें विदा करने आई है।
0: अर्जुन मुस्कुराया और बोला, शायद हमारी पहली दोस्ती को आशीर्वाद देने आई है।
1: दोनों गले मिले और बस चल पड़ी।
0: खिड़की से हाथ हिलाते हुए अर्जुन ने कहा, अगली बारिश में मिलेंगे दोस्त, याद रखना।
1: विक्रम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूर मिलेंगे।
0: आज कई साल बीत चुके हैं दोस्तों। हर बरसात में जब गांव की गलियां भीगती हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है और स्कूल की घंटी सुनाई देती है, तब अर्जुन और विक्रम को अपनी 12वीं कक्षा के वो दिन याद आ जाते हैं।
1: उन्हें याद आता है कि एक साइकिल, एक बस्ता, कुछ अधूरे सपने और वो पक्की दोस्ती जो समय और दूरी से भी नहीं टूट पाई।
0: दोस्तों, सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में साथ खड़ी होती है और जीवन की हर बारिश को यादगार बना देती है।

0: तनुषा, ये थी हमारी आज की प्यार भरी और दोस्ती भरी, गीतों भरी कहानी। तो मुझे लगता है दोस्तों आप सभी को काफ़ी ज़्यादा आनंद आया होगा और अच्छी भी लगी होगी। तो हम प्रत्येक गुरुवार आप सभी के लिए लेकर आते हैं मीठी मीठी दोस्ती भरी, प्रेम भरी ये प्रेम कहानी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम शब्द लगभग हर युवा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिससे आप सभी अवगत भी हैं।
1: बिल्कुल राज, और ये राष्ट्रीय वर्क फ्रॉम होम डे यानी नेशनल वर्क फ्रॉम होम डे हमें याद दिलाता है कि हमारा रोज काम करने का तरीका कितना बदल गया है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने तनुषा। पहले नौकरी का मतलब होता था रोज ऑफिस जाना, लेकिन अब इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से घर बैठे कई ज्यादा काम कर सकते हैं,
1: और ये युवाओं के लिए अवसरों का नया द्वार खोलता है। अब आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में भी युवा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर सकते हैं।
0: सही कहा तुमने। फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन ट्यूटरिंग जैसे कई युवा क्षेत्रों में मतलब आगे बढ़ भी रहे और काम भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम समय और यात्रा का भी तो कितना खर्चा बचाता है राज, जिससे लोग अपनी पढ़ाई, कौशल विकास और आजकल परिवार को भी अधिक समय दे पाते हैं।
0: बिल्कुल, हमने कोविड में इसका एक जीता जागता उदाहरण देखा ही है कि कई युवा घर बैठे काम करते थे और मतलब परिवार को भी समय देते थे, और एक वो हमने कोविड के टाइम में ये मतलब महसूस भी किया है कि हम घर बैठे भी कितना कुछ बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी हम सभी के जीवन में आ जाती है। घर से काम करते समय अनुशासन और समय प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल राज, और सही संतुलन बनाया जाए तो वर्क फ्रॉम होम युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने तनुषा। और वर्क फ्रॉम होम के फायदे कई सारे हैं तो कई सारी चुनौतियां भी हैं।
1: बिल्कुल, कई बार लोग काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बना ही नहीं पाते, जिससे तनाव बढ़ सकता है।
0: वहीं कुछ युवाओं को टीम के साथ सीधे संवाद की कमी भी कभी कभी महसूस हो जाती है।
1: इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि काम के लिए एक निश्चित समय और स्थान तय करना चाहिए।
0: साथ ही नियंत्रित ब्रेक लेना, व्यायाम करना और स्क्रीन टाइमिंग को नियंत्रित करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है।
1: ये तो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है राज, और आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि अपने करियर और कौशल विकास के लिए भी किया जा सकता है।
0: हाँ। और यही वर्क फ्रॉम होम की सबसे बड़ी ताकत है, आप कहीं भी रहकर सीख सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
1: तो दोस्तों यदि आप भी अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं तो डिजिटल कौशल सीखना आज से ही सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है।
0: बिल्कुल ठीक। तो साथियों आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के ये अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे अनूठे दिवस की जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस,
1: इंटरनेशनल सेलर डे। ये दिवस हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के नाविकों और समुद्री कर्मियों के योगदान को सम्मान देना है।
0: दोस्तों, दुनिया के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों के माध्यम से होकर गुजरता है
1: और इन जहाजों को सुरक्षित रूप से संचालित करने में नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: महामारी के दौरान भी जब दुनिया के कई हिस्से बंद थे, तब भी नाविकों ने

0: आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में अहम योगदान दिया।
1: युवाओं के लिए ये क्षेत्र भी एक आकर्षण करियर विकल्प हो सकता है। मर्चेंट नेवी और समुद्री सेवाओं में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल ठीक, ये क्षेत्र साहस, अनुशासन और तकनीकी दक्षता की मांग करता है, लेकिन साथ ही ये दुनिया को करीब से देखने का अवसर भी प्रदान करता है।
1: इसीलिए आज के दिन हम उन सभी नाविकों को धन्यवाद देते हैं जो समुद्र के रास्ते दुनिया को जोड़ने का कार्य करते हैं।
0: और तुमने अनुषा ध्यान दिया होगा कि अभी जब दो देशों के बीच युद्ध चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो जो हमारा आदान प्रदान का कई सारा सामान होता है, एक्सपोर्ट का, इस मतलब हम आपूर्ति कर देते हैं, आपूर्ति रोक देते हैं, तो इन सभी में और खाद्य सामग्री भी उससे हम सभी को प्राप्त होती है, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कई सारी वस्तुएं हो सकती है हमारे देश में, तो ये इनका सबसे बड़ा योगदान नाविका को होता है जो दूसरे देशों से यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो उन सभी को धन्यवाद जाहिर करने के लिए आज का ये विशेष दिन है कि उनके ही योगदान से हमारे बीच पेट्रोल आ पाता है, खाद्य वस्तुएं आ पाती हैं, एक देश से दूसरे देश पहुंच पाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, ये था आज का हमारा खास युवाणी कार्यक्रम। आशा है आपको आज का युवाणी कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। तो अब वक्त है आप सभी को आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर बताने का। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न था कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो उसका सही उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44।
1: और दूसरा प्रश्न था क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, जिसका जवाब है गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता।
0: तो साथियों, आशा है आपको आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अब दीजिए अनुमति अपने दोस्त राज
1: और तनुषा को।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के आरंभ में लीजिए सुनिए चिराग फिल्म का ये गीत, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है और मदन मोहन का संगीत है।

0: लीजिए सुनिए सन 1960 में आई फिल्म परख का ये गीत, जिसके बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और इसका संगीत दिया था सलील चौधरी ने, आवाज़ लता मंगेशकर की।
1: ओ सजना

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गुलजार का लिखा हुआ गीत लीजिए, अब सुनिए। इसका संगीत वसंत देसाई ने दिया था, फिल्म का नाम है आशीर्वाद, और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने।

इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा।

0: वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत,

0: और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
0: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
1: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
0: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी की, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
1: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
0: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
1: जी।
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह

0: मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
1: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
2: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
2: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
2: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
3: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
2: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
4: शिक्षक बंधु, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है, तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?

0: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
1: जी।
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
1: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
0: जी,
1: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
1: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति
1: जी। इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
1: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
0: हाँ हाँ, बताइए।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति
1: जी। इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
0: अच्छा।
1: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
0: जी,
1: वो बहुत ही शानदार है।
0: अच्छा
1: जी।
0: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
0: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
0: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
0: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। हम आकाशवाणी इंदौर से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मैच की कमेंट्री के सीधे प्रसारण के लिए कृपया कुछ पलों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द टी20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
2: First ball 20। 25 जून वो तारीख जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है, क्योंकि आज ही 1983 में इंग्लैंड की भूमि पर भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था। 2026 में उसी इंग्लैंड की भूमि
3: कल दिन भर के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बता दें। सुबह 6:05 पर वंदन बार, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान, वायलिन का विहंगम संसार, संगीत सरिता कार्यक्रम में इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी कल सुबह और शाम 6:45 पर। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुबह 7:00, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 34वीं कड़ी लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित होगा संगीतकार इलियाराजा पर। ये कार्यक्रम आप रात 9:30 पर दोबारा सुन सकते हैं। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश सुनिएगा। दिन में 11:00 रंग तरंग, दिन में 12:00 हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, दिन में 1:00 सुरीला सफर, दिन में 2:00 वंदे मातरम एक जय घोष कड़ी 34। हेलो सहेली कार्यक्रम दिन में 3:00 होगा, इससे पहले 2:30 पर होगा सदाबहार नगमे। गीतों भरी कहानी श्रृंखला में कल सुनिएगा।

अरुण शेखर की कहानी उन दिनों की बात है। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे सुना जा सकता है। 5 बजे छाया गीत कार्यक्रम होगा 5:30 पर तराने नए पुराने। 7 बजे जयमाला सुनिएगा 7:05 पर गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। बजट एक कमाऊ बीवी का। हवा महल के अंतर्गत रात 8 बजे ये नाटिका सुनवाई जाएगी। लेखक मनोहर वर्मा, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। 8:15 पर चित्रलोक सुनिएगा और 9 बजे आपके लिए। संगीतकार इलिया राजा पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। रात 10 बजे छाया गीत सुनिएगा। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। ये था लिखा जोखा विविध भारती से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन लाया, कौन लाया। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने संध्या रंजन, बेला शेंडी की आवाज। फिल्म का नाम है जोधा अकबर, गीत जावेद अख्तर का, संगीत ए आर रहमान।

0: अब सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या रंजन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायोलिन का विहंगम संसार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र। पंडित जी, प्रातः समय गाए बजाए जाने वाले रागों में एक मुख्य राग है अहीर भैरव
2: जी।
1: आज इस राग की चर्चा करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: अहीर भैरव राग का हमें परिचय दीजिए, कैसा इसका चलन है, इसके आरोह अवरोह के बारे में कृपया बताइए।
2: इस राग में देखिए रिखव सा तो होता ही सब राग में। सा के बाद रिखव कोमल है, गंधार शुद्ध है, मध्यम शुद्ध है, पंचम तो शुद्ध होता ही है।
1: हाँ।
2: वो तो स्थिर स्वर है सा और प। फिर धैवत भी शुद्ध है, निखात उसकी कोमल है, रिखव और निखात दोनों कोमल है। सारे गामा पाधा नि सा
1: जी।
2: मैं आपको इस पे करके बताता हूँ।

0: इस राग की खासियत यह है कि भैरव के प्रकारों में ये बहुत लोकप्रिय राग है।
1: जी जी।
0: और इस पे फिल्म वालों ने भी काफी काम किया है, कुछ अच्छे गीत बनाए हैं, और क्लासिकल म्यूजिक में भी ये बहुत लोकप्रिय राग रहा है। तो पहले मैं आपको इसमें एक बंदिश सुनाता हूँ, उस्ताद अमीर खान साहब की बंदिश है वो।

0: क्या बात है पंडित जी। अहिर भैरव में ये खूबसूरत बंदिश सुनने के बाद अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन्ना दा की आवाज में मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गाना। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई,
1: वो ऑल टाइम ग्रेट गीत है वो।
0: जी जी।
1: और उसमें जिस तरह से पंडित रामनारायण के जो सारंगी के पीसेज हैं,
0: जी हाँ,
1: वो बहुत सुनने काबिल है।
0: बजाइए, सुनते हैं
1: जी।

मन्ना डे के स्वर में अहीर भैरव राग पर आधारित मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। ये रचना शैलेंद्र की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन लाया, कौन
2: लाया। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार।
4: 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़।

0: आखिरी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदना भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ला ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वेनेजुएला की कार्यवाहक

0: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमरीका के फुलटर्न में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। श्रोताओं, साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 मेगाहर्ट्ज आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार दिनांक 26 जून 2026 को सुबह 11:32 से लेकर 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहें सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 26 जून 2026 यानी कल सुबह 11:32 से लेकर 12 बजे तक FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगे DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर। आप श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर हैं जिन पर कॉल करके आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, कृपया वो टेलीफोन नंबर नोट कीजिए। तो हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। एक बार फिर से आपको नंबर बताते हैं, कृपया नंबर सुने 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का STD कोड है 0731। जी हाँ, 0731 ये इंदौर का STD कोड है। कृपया STD कोड लगाकर फिर टेलीफोन नंबर डायल करें। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय एक बार फिर हम आपको बताते हैं, कृपया वो भी नोट करें। शुक्रवार दिनांक 26 जून 2026 यानी कल सुबह 11:32 से लेकर 12 बजे तक विविध भारती चैनल पर। तो आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां जानने के लिए विशेषज्ञ DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर से चर्चा कर सकते हैं और सवाल अपने पूछ सकते हैं, अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकते हैं। आप शुक्रवार दिनांक 26 जून 2026 को यानी कल सुबह 11:32 से लेकर 12 बजे तक विविध भारती 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का STD कोड 0731। प्रसारण समय कल सुबह 11:32 से लेकर 12 बजे तक। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच T20 वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 खेला जा रहा है और इस मैच की कमेंट्री का हम आपको सीधा प्रसारण सुनवा रहे हैं। तो आज हम आपको इसका सीधा प्रसारण सुनवाएंगे अब से कुछ ही देर बाद, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन अभी सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचारों के लिए कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर देशभर में लोकतांत्रिक मूल्यों पर हुई चर्चा, प्रधानमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 203 करोड़ रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट या मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 300 दिनों के अवकाश का नकदीकरण कर सकेंगे। और प्रदेश के 15 जिलों में मॉनसून की दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर देशभर में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक अत्यंत कठिन दौर था, जिसने हमारे संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित की गई और राजनीतिक नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है ताकि भविष्य में लोकतंत्र पर ऐसा हमला फिर न हो। उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल की विभीषिका के विरुद्ध डटकर खड़े होने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को नमन करते हुए कहा कि 25 जून 1975 देश में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था। आज के ही दिन 1975 में इंदिरा सरकार के अहंकार के परिणाम स्वरूप देश में आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स

0: का दौरा किया था। भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनजन के मजबूत संबंध हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 33,92,695 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्गों के खातों में 203,56,00,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य सरकार का कोई भी निर्धन परिवार, माताएं बहने, हमारे दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंत्योदय का संकल्प सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: नर सेवा ही नारायण सेवा, ये जो माननीय मोदी जी का भाव है, इस भाव के आधार पर आज 33,92,695 से अधिक इस विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के जुड़े हुए सभी भाई बहनों और बुजुर्गों को मई महीने की 203,56,00,000 की राशि ट्रांसफर करने की आप सबको बधाई देता हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सभी प्रकार के गरीब, युवा, नारी, किसान सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
0: भोपाल के लोकभवन में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 102वीं बैठक आयोजित हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्वविद्यालयों को युवाओं में कौशल, योग, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं को अधिक अवसर देने और गरीब कल्याण की योजनाओं से विद्यार्थियों को जोड़ने पर बल दिया। बैतूल जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से विभूषित किए जाने के बाद भोपाल लौटे मोहन नागर का मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा,
2: 23 जून को अवार्ड जब मिला तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि वर्षों की जो साधना थी, जो छोटे छोटे काम हम बैतूल के जनजातीय समाज के साथ गंगा अवतरण अभियान के और कार्यकर्ताओं के साथ जो कर रहे थे, उसको और देश के शीर्षस्थ लोगों ने संज्ञान में लिया और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो काम किया है, बैतूल के जनजातीय समाज के बीच में शिक्षा को लेकर के जो काम किया है राष्ट्रपति जी ने, उसको संज्ञान में लेकर के और इतना बड़ा पुरस्कार उस अभियान को दिया है, मैं सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट राशि के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब कर्मचारी रिटायरमेंट या सेवा काल में मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली छुट्टी की राशि का स्व आकलन कर सकेंगे। आदेशानुसार कर्मचारियों को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश ईएल का ही नकदीकरण लाभ मिलेगा। यदि किसी ने पहले इसका लाभ लिया है तो वो अवधि कुल 300 दिनों की अधिकतम सीमा में से घटा दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में कल दस्तक दे दी है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर करने का अनुमान है। विभाग ने कल सीहोर, सागर, विदिशा, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी से सामान्य बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों के दौरान खंडवा जिले में 24.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं सीहोर जिले में इस दौरान 0.91 इंच बारिश हुई। छिंदवाड़ा जिले में 1 जून से अब तक कुल 64.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। दतिया जिले में अब तक केवल 13.25 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। उधर पांडुर्ना जिले के ग्राम बड़ चिचोली में खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने स्कूली वाहनों की नियमित और सघन जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं। धार जिले के धामनो क्षेत्र में परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 50 स्कूली वाहनों की जांच की। नियम विरुद्ध पाए गए 7 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 33,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। नर्मदापुरम जिले में रेशम समृद्धि योजना के तहत किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ई रेशम पोर्टल पर मलबरी पौधरोपण हेतु ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया है। सागर जिले में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए वर्षा जल संचयन के लिए फॉर्म पॉन्ड्स के निर्माण के निर्देश दिए। झाबुआ जिले के मेघनगर में संभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा मेघनगर और उदयगढ़ में औचक निरीक्षण कर किराना दुकानों और दुग्ध केन्द्रों से खाद्य पदार्थों के 34 नमूने जांचे गए। शहडोल जिले के बुढ़ार में जनजातीय कार्य विभाग ने 2 करोड़ रूपये से अधिक की गंभीर वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने पर पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा को बर्खास्त कर दिया। नीमच जिले के ग्राम हनुमंतिया व्यास में शासकीय कुएं से पानी बेचने की शिकायत पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर पीएचई विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर रोक लगाई। गुना की चाचौड़ा शाखा में खाद वितरण व्यवस्था में लापरवाही और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के बाद प्रभारी प्रबंधक को हटाकर मोन्टू बिंदल को नया प्रभार सौंपा गया है। भोपाल के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के आनंद विद्या मंदिर में सेफ क्लिक 2.2 अभियान के तहत करीब 250 छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। मंदसौर में पीएचई विभाग द्वारा भानपुरा में आयोजित कार्यशाला में 44 ग्राम पंचायतों को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए 10 प्रकार की जांच वाली फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी इंदौर से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको एक बार फिर से ले चलते हैं दिल्ली। आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मैच की कमेंट्री के सीधे प्रसारण के लिए
1: खेला सुरक्षित स्ट्रोक, कोई फील्डर वहां पर थी नहीं और ये चौका एक और आता हुआ बांग्लादेश के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 27 एक विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर चल रहा है, दो गेंदे अभी भी बची हुई हैं और इस ओवर में दो मौके भारतीय फील्डर नंदिनी के हाथ से फिसले हैं। अगली गेंद इस बार

0: पर समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना

अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित

0: सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं निफ्टी में ये गिरावट 2

0: of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. And that's all in the news at 9. Good night.
1: अंक हैं, दोनों ने एक एक मैच गंवाया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना मुकाबला गंवाया, जबकि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच गंवाया था। इस बीच में एक और गेंद जिस पर कोई रन नहीं आया। भारत ने पाकिस्तान को हराया था 64 रन से, नीदरलैंड्स को हराया था 95 रन से, दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से हार मिली थी। अगली गेंद को इस बार लॉब किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ और गेंद चार

मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये बारिश फिल्म का गाना था। वर्मा मलिक के बोल थे, संगीत उत्तम जगदीश का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बेताब फिल्म का गाना।

0: उसने यार।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले

0: हैं और चाहने वाले हैं, जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है, और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13 14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिलके काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा, और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा, और इसकी वजह भी है। सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें
1: अवार्ड्स
0: बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी, मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था, और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 बजे ऑन किया, और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो उन्होंने मुझे, डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं, और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया, और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैंने देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा जी, आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी, और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी, और उन्होंने कहा मदन, मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है, और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था, और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए, और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ, एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माताजी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

न यूं खामोशियों की ओट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुनाइए।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे समझेंगे।

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो, पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे।

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के, शिकवे के, शिकायतों के, इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना, इसकी भी एक हद होनी चाहिए। एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आपको दे दें। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार दिनांक 26 जून 2026 को सुबह 11:32 से लेकर 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहें सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 26 जून 2026 यानी कल सुबह 11:32 से लेकर 12 बजे तक FM 101.6 MHz विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगे DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय कृपया नोट कीजिए। शुक्रवार यानी कल 26 जून 2026 को सुबह 11:32 से लेकर 12 बजे तक विविध भारती चैनल पर। तो आप भी फ़ोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। आप शुक्रवार दिनांक 26 जून 2026 को सुबह 11:32 से लेकर 12 बजे तक विविध भारती 101.6 MHz पर ये कार्यक्रम सुन सकते हैं और ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: मालवा की शान।
1: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत,
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
2: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्षभर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new